सुप्रभात FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि तदनुसार 20 जून सन 2026 ईस्वी। आज का दिन हम सबों के लिए मंगलमय हो। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 और 40 सेकेंड हो रहे हैं। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण।

हम आकाशवाणी के हजार विभाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4थे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 6:05 और 13 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन, शीर्षक है कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक।
3: कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वेद परमात्मा को निराकार, निर्गुण, अखंड, अभेद और अदृश्य मानते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तक शक्ति स्वरूप हैं। जैसे अग्नि में ताप, सूर्य में ज्योति, हवा में स्पर्श, जल में स्वाद हैं, उसी तरह प्रत्येक वस्तु में परमात्मा की शक्ति छिपी हुई है। सहज ढंग से कहा जाए तो जैसे बिजली के तार में विद्युत शक्ति छिपी है, स्विच ऑन करने पर कमरे में प्रकाश आ जाएगा, किंतु तार को काट कर देखा जाए तो वो शक्ति नहीं मिलेगी, पर छिपी हुई है। जैसे फूल में सुगंध है, परंतु फूल को नोचने पर गंध वायु में विकर्ण हो जाएगी, वो मिलेगी नहीं, पकड़ी ना जाएगी और ना छुई ही जाएगी। परमात्मा की शक्ति तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से समझी जाएगी। कबीर ने परमात्मा के इस रहस्य को बहुत ही सहज ढंग से कह दिया है। तेरा साई तुझ में जस पहुपन में बास, कस्तूरी का मीरक ज्यों फिर सूखे घास। उन्होंने वेदांत और उपनिषदों के गंभीर विचारों को सहज बोध गम्य बना दिया है। स्वामी अर्थात भगवान मनुष्य में उसी प्रकार वर्तमान है जिस प्रकार फूलों में सुगंध है। मनुष्य अपने में छिपी हुई परमात्मा शक्ति को ना समझकर इधर उधर भटकता है। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी गंध मिलती रहती है, किंतु मृग उसे ना समझकर इधर उधर भटकता रहता है, घास सूंघता रहता है। ठीक वैसे ही मनुष्य अपनी परमात्म शक्ति को ना समझकर जगह जगह भटकता रहता है। परमात्मा तो हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं कि मोह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान के विषय में कहा जा सकता है कि भगवान शब्द में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर समाहित है। भा से भूमि तत्व, गा से गगन तत्व, वा से वायु तत्व, वा के साथ के आ से अग्नि तत्व और ना से नीर तत्व, अर्थात इन पांचों की शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है, जो अखंड मंडलाकार विश्व मंडल में व्याप्त है। वही हम में, तुम में, खड़ग खंड में है। प्राणी का शरीर पांचों तत्व से बना है। शरीर के नष्ट होने पर ये पांचों तत्व उन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। इसे कबीर ने इस रूप में व्यक्त किया है। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर पूरे विश्व में परमात्मा की लाली देखते हैं और कहते हैं कि मेरे लाल की लाली अर्थात परमात्मा की शक्ति चारों ओर व्याप्त है। मैं जिधर देखता हूँ उधर उसकी लाली दिखाई देती है। उसको देखने के लिए जाने पर कबीर की आत्मा भी लाल हो जाती है। इसी भाव को वे दूसरी साखी में यूं प्रकट करते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, एतत् काहु ज्ञानी। इस साखी में उन्होंने भगवान शरीर को कुंभ माना है। उसमें वर्तमान जीवात्मा की शक्ति को जल बताया है। अखंड विश्व में व्याप्त परमात्मा की अनंत शक्ति को महासमुद्र का जल माना है, जिसमें मनुष्य का शरीर रूपी घट है और उसमें उसी समुद्र का जल भरा हुआ है। जब घट फूट जाएगा तो घट का जल समुद्र के जल में मिल जाएगा। ऐसे ही मनुष्य के शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है तो जीवात्मा की शक्ति परमात्मा शक्ति में विलीन हो जाती है, एवं शरीर के पांचों तत्व विभिन्न रूपों में पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान विभिन्न ढंग से जिन भावों की व्याख्या करते हैं, उन्हें कबीरदास जी ने बहुत सहज और स्वाभाविक ढंग से प्रकट किया है। वस्तुतः ज्ञानी लोग पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर परमात्मा के रहस्य को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर अपने अनंत साधना और चिंतन मनन से प्राप्त अनुभव के आधार पर परमात्मा के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान वाले पंडितों से कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। वे ये भी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगपुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर के विचार से पंडित वही है जिसने प्रेम के ढाई अक्षर को पढ़ा है। कबीर का प्रेम भौतिक सुख शांति के लिए सांसारिक प्रेम नहीं है। कबीर का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रेम है जो आध्यात्मिक है, परलौकिक है। कबीर की आत्मा प्रियतमा है और परमात्मा प्रियतम है। वे अपने को राम की दुल्हनिया कहते हैं। परमात्मा के प्रेम की उसी सुर लहरी में सुर मिलाकर गा उठते हैं, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। परमात्मा प्रेम के रंग में रंग जाने पर फिर संसार का कोई महत्व ही नहीं। जब साधक साधना में सफल हो जाता है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाता है।
2: कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक, शीर्षक से आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घड़ी में समय सुबह के 6:11 हो चुके हैं। आइए शामिल होते हैं ईश्वर भक्ति में, कार्यक्रम है वंदना।

वंदना। अभी आप सुने थे भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 6:40 और 26 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी, एपिसोड 6।

श्री रामचरित मानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी में सुबह सुबह के 6:50 हो चुके हैं। आइए डालते हैं एक नजर आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के ऊपर। अब से थोड़ी देरी में यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। सामाजिक वार्ता का कार्यक्रम प्रसंग होगा सुबह 7:20 पर। गैर फिल्मी लोकगीतों का कार्यक्रम गीत संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 8:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9 बजे हम आपको ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे हम आपको पुनः ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 12 बजे दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम,

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 पर हम आपको ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। उससे पहले 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे हम आपको पुनः ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। और 3:55 पर आप सुनेंगे पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 30वीं किस्त जारी किए जाने का सीधा प्रसारण। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 5:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और 6:02 से आप सुनेंगे कार्यक्रम मेहनत कश। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल आप सुन सकेंगे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झनकार। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स होगा, आप सुनेंगे 7:30 पर। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नव चेतना। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी चाहत। 8:10 पर विशेष श्रृंखला होगा वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे News@9 और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट, जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। और रात 10 बजे कार्यक्रम रजनीगंधा होगा। 10:30 पर आज के फनकार आप सुनेंगे। और रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रोजाना की तरह रात 11:10 पर सभा का समापन होगा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घड़ी में इस समय सुबह के 6:55 होने को है। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आप सुन रहे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग FM हजारीबाग से। ये लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए सियाराम पासवान की आवाज में ये खोटा लोकगीत।

लोक रंग अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो घर में इस वक्त सुबह के 7:20 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सामाजिक वार्ता का कार्यक्रम प्रसंग।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:21 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सामाजिक वार्ता का कार्यक्रम प्रसंग के तहत वार्ता शिक्षा सबके लिए। वार्ताकार हैं डॉक्टर साबिर हुसैन।
1: शिक्षा समाज के प्रगति और विकास का मूल अंग है। समाज, राज्य अथवा देश तभी प्रगति और विकसित हो सकता है जबकि उसके लोग शिक्षित हों। शिक्षित होने से ही उनकी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। नेशनल लेवल पर जैन समाज में साक्षरता दर 94% है, क्रिश्चियन समाज में 74.3%, बुद्धिस्ट समाज में 71.8%, सिख में 67.5%, हिंदू में 63.6% तथा मुस्लिम में साक्षरता दर 57.3% है। मुस्लिम में केवल 2.76% स्नातक या उससे ऊपर स्तर तक शिक्षित हैं तथा केवल 8.5% सरकारी नौकरियों में हैं। 48.1% मुस्लिम महिलाएं अशिक्षित हैं। करीब 31% मुस्लिम गरीब रेखा के नीचे हैं। अशिक्षा के कारण कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं जिससे फर्टिलिटी रेट अधिक तथा चाइल्ड मोर्टालिटी रेट अधिक होने के कारण स्वास्थ्य खराब होते

0: किया जाता है, मुस्लिम समाज में जागरूकता की कमी है। महिला शिक्षक की कमी के कारण भी महिला साक्षरता दर कम है। झारखंड राज्य में जहां 24 जिले, 260 या उससे अधिक प्रखंड हैं तथा 32,615 राजस्व ग्राम हैं, झारखंड में उसी तरह 40 से अधिक मुस्लिम जातियां निवास करती हैं। कुछ जातियों को छोड़कर अधिकतर मुस्लिम जातियों का साक्षरता दर 20 से 30 प्रतिशत या उससे कम है, जो आदिम जातियों के जैसा है। आदिम जनजातियों में झारखंड में देखें तो असुर, बिरजिया, बिरहोर, परहिया, कोरवा, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सवर 8 आदिम जनजातियां हैं। मुस्लिम जातियों में जबकि साक्षरता दर जिनका कम है उन्हें डफाली, चोक, कसाब, धुनिया, पमरिया, भटियारा, भाट, चूड़ीहार, लाल बेगिया, रंगरेज, साई, मदारी, मोर्चिकार, मिरियासिन, हलालखोर, नालकंद, सकेलगर, बलखोर, मुकरी, चीख, नाई, दर्जी इत्यादि हैं। इतना ही नहीं, कुछ जातियों के बारे में हमें यह पता नहीं है कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम, जैसे जादूपटिया, कागजी, कोस्ता, जोगी, तमोली, परथा, रिसिया, कुल्हैया इत्यादि। इन जातियों पर शोध की जरूरत है। हर जिला में एक माइनॉरिटी सेल बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय में जागरूकता लाने, हर गांव टोला में इनके लिए स्कूल तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाए, तभी इनका प्रगति तथा विकास संभव हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी भाषा, अपनी लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा पूरा अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने का पूरा पूरा अधिकार है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 59% है, जबकि इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं की साक्षरता दर केवल 49.4% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के ऐसे 10 राज्यों के 88 जिले को चिन्हित किया गया है जहां पर अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर अत्यंत निम्न है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 28 जिले ऐसे हैं जहां इस समाज के खासकर महिलाओं की साक्षरता दर 35% या इससे कम है। इसका कारण यह है कि इनकी एक बड़ी आबादी शिक्षा से लगातार महरूम रहा है तथा बच्चों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। झारखंड राज्य में जनजातियों में ड्रॉप आउट का मुख्य वजह प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षक नहीं समझ पाते और शिक्षक की भाषा बच्चे नहीं समझ पाते। जैसे मुंडारी भाषा जानने वाले बच्चों की भाषा हिंदी भाषा जानने वाले शिक्षक नहीं समझ पाते हैं। अभिभावकों का शिक्षा के प्रति उदासीनता भी एक मुख्य कारण है। यह समस्या बहुत हद तक झारखंड सरकार द्वारा दूर किया जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार भारत वर्ष में 1635 जनजातीय भाषाएं प्रचलित हैं, जिसमें से 197 भाषाओं को संकटग्रस्त भाषा घोषित किया गया है क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पर हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। आने वाले समय में शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्कूली शिक्षा में से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास की नींव प्रारंभिक बाल्य अवस्था से ही किया जाएगा। माना जाता है कि बच्चों का मस्तिष्क का मैक्सिमम विकास 6 वर्ष से पहले हो जाता है। नई शैक्षणिक एवं पाठ्यक्रम का ढांचा 5+3+3+4 का होगा। शिक्षा अब किसी विशेष तबके या वर्ग के लिए न होकर सार्वभौमिक होगा, जहां सभी लोगों के लिए समान अवसर होंगे। 100% नामांकन होगा। प्रारंभिक कक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा की प्राथमिकता एवं बच्चों के समग्र विकास के प्रति उत्तरदायी होना नई शिक्षा नीति के प्रावधान है।
1: शिक्षा सबके लिए विषय पर आप सुन रहे थे सामाजिक वार्ता का कार्यक्रम प्रसंग के तहत। ये वार्ताकार थे डॉक्टर साबिर हुसैन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। पेश खिदमत है अगर फिल्में उनके गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत लिए प्रोग्राम की शुरुआत में आपको सुना रहे हैं अभिजीत की आवाज में ये गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: आप सुन रहे हैं एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत एफएम हजारीबाग से। ये लीजिए यह प्रोग्राम के लिए पेशकश अलीशा चिना की आवाज में।

0: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अलीशा चुनाई का आपने सुना, आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत एफ एम हजारीबाग से। इसलिए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुना रहे हैं पंकज मिठास की आवाज में ये गीत।

गीत संगीत अभी आप सुन रहे थे कार्यफिल्म एल्बम के गीतों का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी में इस वक्त सुबह के 8 बजने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक, और सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।

21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
8: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
7: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
9: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
7: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से

0: scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त करेंगे जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सदर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में, व्यापक स्तर पर योगाभ्यास जारी। कल भी खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, मौसम विभाग ने कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और रांची में आयोजित नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, तीसरे दिन एक स्वर्ण और एक रजत पदक पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस अवसर पर जन कल्याण शिविर भी लगेंगे, जहां समस्याओं का समाधान और योजनाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
3: 20 तारीख को ठीक 2 बजे 20 जून का दिन पूरे देश में पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि खाते में डालेंगे। इस अवसर पर जन कल्याण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में जनता की जायज समस्याओं का समाधान होगा।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रांची और बोकारो सहित राज्य के कई जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के जैप वन परिसर में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में नए लाभार्थी, युवा और विभिन्न क्षेत्रों की नियुक्ता शामिल हुए। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तनवीर अहमद ने इस योजना की सराहना करते हुए इसे देश में औपचारिक रोजगार और युवाओं की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने वाला एक क्रांतिकारी कदम बताया है।
4: रांची में करीब 400 लोग नियोक्ता जो एम्प्लॉई हैं, सबकी भागीदारी बहुत अच्छी है। सोच है विकसित भारत की, उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों को सारे नियोक्ता और जो लोग आए हैं यहाँ पर उन सबका धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये स्कीम अच्छी चलती रहेगी और प्रधानमंत्री का सपना जो विकसित भारत का है कामयाब होगा।
2: इधर सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम आयोजित हुआ। योजना के तहत 2 वर्षों में 3,50,00,000 रोजगार का लक्ष्य है। पहली नौकरी पर युवाओं को 15,000 रूपये और कंपनियों को प्रति कर्मचारी 3,000 रूपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सांसद जोबा मांझी ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी जिलों के सिविल सर्जनों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मंत्री ने कहा कि तय सीमा के भीतर सदर अस्पतालों की कमियां दूर न होने पर संबंधित सिविल सर्जन को पद से हटा दिया जाएगा।
5: 15 दिन का मैंने मोहलत दिया है कि हर बात मीडिया में नहीं आना चाहिए। खामियां आ रहा है तो खामियों को ठीक कीजिए और अपनी जिम्मेवारी को लीजिए। अगर आप जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं तो मैंने 15 दिन तक का समय दिया, सब सिविल सर्जन को हटा दें। जितने भी सदर हॉस्पिटल है और रेफर हॉस्पिटल है वहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं है अपना, सब 108 के भरोसे है। तो जब मैं डिटेल मांगा तो बता रहा सर सारा एम्बुलेंस खराब है।
2: उन्होंने यह भी बताया कि अस्पतालों में एम्बुलेंस की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार 224 नई एम्बुलेंस खरीदने जा रही है। रांची में ट्रैफिक एसपी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है। कल महात्मा गांधी रोड पर मॉडिफाइड बाइक, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म और बिना हेलमेट वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। जांच में 10 से ज्यादा मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें पकड़ी गईं, जिनके साइलेंसर मौके पर ही खोलकर ऑनलाइन चालान काटे गए। इसके अलावा पॉल्यूशन फेल वाहनों और बिना हेलमेट

0: चलने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार झारखंड की करीब 8 से 10 फीसदी आबादी सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही एक बड़ा स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने जा रही है। डॉक्टर अभिषेक रंजन ने बताया कि राज्य में इस आनुवांशिक बीमारी का प्रसार काफी अधिक है।
1: प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि हम अपने राज्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोग इसको और इंटेंसिफाई कर सकें, क्या फैसिलिटीज हमारे मरीजों को मिल रही है, उनका क्या हक है, उसके बारे में हम लोग एक अवेयरनेस बता सकें राज्य के नागरिकों को। सही सब भी आई हुई थी, ट्रेनिंग कर सकें, उनको बता सकें कि पेशेंट को क्या क्या दवा अवेलेबल है, क्या क्या दवा उनको अवेलेबल कराना है, वैक्सीनेशन का क्या रोल है, बीमारी की क्या गंभीरता है, राज्य सरकार का क्या योगदान है।
0: और शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गोड्डा में स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में व्यापक स्तर पर योगाभ्यास चल रहा है। कई गांवों से हजारों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। स्थानीय योग प्रेमियों और प्रशिक्षकों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वैश्विक पहल से लोगों में सेहत के प्रति क्रेज बढ़ा है और योग से बीपी तथा शुगर जैसी बीमारियां नियंत्रित हो रही हैं।
4: जब से योग दिवस स्टार्ट हुआ है प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से, तब से हम लोग योग से काफी जुड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके योग करते हैं और 21 जून को गांधी मैदान में लगभग 400 से 500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और योग करेंगे।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल आज और कल खुले रहेंगे। शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए स्कूल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक संचालित होंगे। यहां योग गतिविधियां होंगी। शिक्षकों की 100% उपस्थिति अनिवार्य है और कार्यक्रमों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून के राज्य में कई अन्य हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। रांची में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन राज्य के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। आरव यादव ने ट्रैक पर तेज रफ्तार दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं हजारीबाग के नूर आलम ने शानदार खेल दिखाते हुए रजत पदक जीता। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही प्रतियोगिता में मेजबान झारखंड के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है। इन पदकों में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है।

दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मांडर में 115 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन का बिना रजिस्ट्री ही म्यूटेशन। हिंदुस्तान के शब्द हैं, डीवीसी क्षेत्र के 6 जिलों में बिजली को लेकर ज्वाइंट वेंचर। प्रभात खबर लिखता है, 1 जुलाई से रांची से 4 विमान सेवाएं होंगी बंद। दैनिक जागरण ने लिखा है, रांची संघ कार्यालय के बाद कानपुर और लखनऊ में धमाके की थी तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त करेंगे जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सदर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में, व्यापक स्तर पर योगाभ्यास जारी, कल भी खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, मौसम विभाग ने कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और रांची में आयोजित नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, तीसरे दिन 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ के चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्मी संगीत का कैप्टन मॉर्निंग मेलोडी।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, 102.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। मॉर्निंग मेलोडी प्रोग्राम का पहला गीत सुनने से पहले हम आपको सुना रहे हैं ये जरूरी संदेश।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मॉर्निंग मेलोडी प्रोग्राम कर लीजिए पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हीरो से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लिए प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म हिना से।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
4: हिना फिल्म का ये गीत सुनिए, आवाज है लता मंगेशकर की।

मॉर्निंग मेलोडी अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को है। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भरती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम के अंत में तेरे नाम फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

0: सास हूँ सदा।
1: बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमती और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनू रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका यह विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह।

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए वासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है, और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: जून को है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम हेलो हजारीबाग।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: हेलो हजारीबाग
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है आप ही के इस कार्यक्रम में। एक घंटे के इस गीत संगीत और दिलचस्प जानकारियों के कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं अली शब्बीर, कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। दोस्तों और प्यारे श्रोताओं, इन दिनों मौसम में कुछ तब्दीली और परिवर्तन तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन और शाम में तापमान में कुछ गिरावट होने से थोड़ी राहत और सुकून का एहसास भी हो रहा है। मानसून के आने की शिद्दत से इंतजार है और वो इसलिए भी कि रोजाना यानी दिनचर्या के जो काम है उनमें रवानी आए, उसमें कुछ तेज रफ्तारी आए और ये जरूरतों व आवश्यकताओं का तकाजा भी है। फिलहाल अभी वक्त का तकाजा ये है कि हम आपको सुनवाएं एक खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, अब आज का सुविचार हम जान लें। दोस्तों, माफ करना और इंसाफ करना, ये दो ऐसे आमाल हैं, दो ऐसे कर्म हैं जिनका सवाब यानी पुण्य तौला नहीं जा सकता। और अब बात कुछ आगे करते हैं। दोस्तों, आज 20 जून की तारीख है और पूरी दुनिया में आज के दिन को एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो है विश्व शरणार्थी दिवस। आइए कुछ बातें करते हैं इसी ताल्लुक से। दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य संघर्ष, हिंसा और उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए लाखों लोगों के साहस, संकल्प और संघर्ष को सम्मान देना है। दोस्तों, इस दिवस के आयोजन और कार्यक्रम के तहत शरणार्थियों में जागरूकता बढ़ाना है, यानी दुनिया भर के लोगों को शरणार्थियों की दुर्दशा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूक करना है और साथ ही उनके साहस का सम्मान भी करना है, यानी उन सामान्य लोगों के अदम्य साहस और शक्ति का जश्न मनाना जो असाधारण परिस्थितियों से गुजरकर अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। दोस्तों, शरणार्थियों के अधिकारों, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन और संसाधन जुटाना इसका उद्देश्य रहा है। दोस्तों, करेंगे इस ताल्लुक से और भी बातें, लेकिन आइए सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

0: इस वक्त सुबह के 10:16 हो चुके हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको एक भेंट वार्ता, संपूर्ण स्वास्थ्य का समाधान योग। भेंट वार्ता कर रहे हैं अनिल कुमार, उनसे बातें की हैं परविंद कुमार मिश्रा ने।
1: श्रोताओं, आदिकाल से भारत विश्व गुरु रहा है। भारत को योग का जनक कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैश्विक मान्यता इसकी मिली और 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। आज इसी संदर्भ में हमारी बातें हो रही है योगाचार्य अनिल कुमार मिश्रा जी से। तो अनिल कुमार मिश्रा जी, आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
2: धन्यवाद।
1: आज हमने आपको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए। तो आप हमें ये बताइए कि आखिर का ये योग क्या है?
2: जहाँ तक योग की बात आती है, लोग कहते हैं कि योग क्या है। योग का सबसे बड़ा शाब्दिक अर्थ अगर माना जाए तो हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा आत्मा का जुड़ाव ही योग है।
1: योग का एक व्यापक महत्व भी है, एक व्यापक अर्थ में योग को लिया जा सकता है। आप हमें ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या उद्देश्य है?
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का एक ही उद्देश्य है, स्वास्थ्य को सुचारू रूप से स्वस्थ रख सके, निरोग रखे, पूरे समाज में हर लोग स्वस्थ रह सके, स्वस्थ रह सकते हैं, लोगों को इसके लिए जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस लाना। ये सबसे पहले तो हमारे
1: सोच को हमने
2: प्रधानमंत्री ने ही इसका जो है सो सबसे पहले प्रस्ताव रखा था और इसको 2015 से इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है।
1: अच्छा, आप हमें ये बताइए अनिल जी कि क्या योग सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त है?
2: बिल्कुल हाँ, क्योंकि हर वर्ग के लोगों के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। अगर हम युवा पीढ़ी को देखा जाए, आजकल युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं मानसिक तौर पे, तरह अवसाद, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, कुछ नशा वगैरह करना शुरू कर दे रहे हैं। तो वैसे लोग जो है सो अगर योग से जुड़ते हैं तो उनका नशा भी छूटेगा और स्वस्थ रह भी पाएंगे। जो लोग 30, 35, 40 के हो गए हैं, उनके अंदर में हड्डियों का डेंटिसिटी कम हो रहा है, मांसपेशियां कमजोर हो रही है। अच्छा। लिगामेंट्स कमजोर हो रहे हैं, हमारी कोशिका कमजोर हो रही है। अच्छा। तो योग साधना से उन सब चीजों को हम रिवर्स कर सकते हैं।
1: जी।
2: और रही बात बुजुर्ग लोगों, अगर योग कराया जाए तो उनके पैर, हाथ और गर्दन के, जैसे अभी बहुत ज्यादा
1: पोस्चर वगैरह,
2: जी पोस्चर, बैठने का जो पोस्चर है लोगों का बिगड़ता जा रहा है। बुजुर्ग होने के बाद मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं,
1: स्मरण शक्ति वगैरह भी,
2: जी स्मरण शक्ति जो है सो कमजोर हो जा रहा है। तो स्मरण शक्ति के लिए भी हम लोग योग करते हैं, प्राणायाम वगैरह करवाते हैं अपने दिनचर्या में। अगर योग को शामिल किया जाए तो सूक्ष्म व्यायाम से वो अपने हाथ पैरों को चला पा रहे हैं और अपना दिनचर्या को सुचारू रूप से कर पा रहे हैं।
1: क्या किशोर अवस्था में अगर हम इसको शुरुआत करते हैं तो युवा अवस्था में जो आने वाली जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, या जैसा आपने कहा कि लोग आज डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, स्मरण शक्ति कमजोर हो रहा है, एकाग्रता नहीं हो पा रहा है लोगों में, तो किशोर अवस्था में इसको क्या शुरू किया जा सकता है, कैसे?
2: आजकल देखिए, अभी हम लोग आयुष विभाग से जुड़े हुए हैं और हम लोग छोटे छोटे बच्चों को भी, जो आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं, उन्हें गेम के माध्यम से उन लोगों को योग से जोड़ रहे हैं ताकि वो लोग जो है सो योग के प्रति रुचि बढ़ सके। और अगर वो शुरू से ही अपने शरीर को लचीला बनाए रखे हैं तो आने वाले टाइम में उनका शरीर जो है सो लचीला बना रहेगा।
1: योग करने का जो सही समय

0: है
1: जी,
0: वो क्या है?
1: तो योग करने का जो है सो ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि जिस समय सूर्य निकलते हैं
0: उसके
1: उससे पहले कर ले मेडिटेशन वगैरह के लिए। तो मेडिटेशन के लिए वो समय बहुत ही अच्छा होता है, या तो सूर्य निकलने के बाद भी जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह हम लोग करवाते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं।
0: अच्छा, योग करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए?
1: जैसे योग करते हैं तो बहुत लोग जो है सो ये करते हैं कि जैसे बीमार लोग हैं और वो बहुत तेजी के साथ प्राणायाम भी करने लगते हैं या कठिन आसनों का अभ्यास करने लगते हैं, किसी जानकार योगाचार्य के अंदर में या एक्सपर्ट के अंदर में अगर योग करते हैं तो ज्यादा अच्छा है।
0: जो आप हमें ये बताइए कि व्यस्त जीवन में
1: जी,
0: योग को कैसे शामिल करें?
1: तो वैसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अभी मान लीजिए बैठ करके हम श्वास को ले सकते हैं, जैसे पूरक कर सकते हैं, अपने डीप ब्रीथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबी गहरी श्वास आप ले सकते हैं, उसे हम लोग अंतःकुंभक बोलते हैं, फेफड़े में अगर श्वासों को रोक करके रखते हैं और फिर जब फिर रेचक कर देते हैं, श्वासों को बाहर निकाल देते हैं तो रेचक कर दिए, और रेचक का भी समय अवधि थोड़ा सा लंबा खींचे, जितना ज्यादा आप लंबा खींचेंगे उतना
0: श्वास धीरे धीरे छोड़े
1: जी, मतलब फेफड़े का जितना कार्बन है, जितनी गंदगी है, उससे आपका जो है फेफड़ा साफ होता है। तो आप अपने जीवन शैली में भी योग को अपना सकते हैं, बट आप जागरूक हैं उसके लिए एकाग्रता रखते हैं कि मुझे काम ये अच्छे तरीके से करना है।
0: योग के बारे में जो आम भ्रांतियां हैं वो क्या हैं?
1: कॉलेज स्कूल में जाते हैं, बोला सर क्या है ये बूढ़े वाली बात, श्वास लो फूफा करो, बट योग से, योग साधना से आप मेडिटेशन करते हैं, अपने ब्रेन की जितने ऑर्गेन्स है, हमारा जितना भी हार्मोनल ग्रंथियां है, जैसे हाइपोथैलेमस है, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड हमारे सक्रिय होते हैं हमारे मेडिटेशन से और प्राणायाम से, वो हमारा जिम से और व्यायाम से नहीं मिलता।
0: ये अष्टांग योग जो है वो क्या है और इसके जो आठ अंग है वो कौन कौन से हैं?
1: जी, सबसे बहुत अच्छा आपने सवाल किया सर, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है कि हमारे योग में आठ अंग होते हैं। सबसे पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ये समाधि। इसके कुछ ब्रांचेज भी हैं, जैसे हम अगर यम की बात करें तो इसमें जो है सो क्या है, हिंसा नहीं करना है, मन से, तन से, धन से, किसी भी प्राणी का अगर आप हिंसा करते हैं तो आप सुखी से नहीं रह पाएंगे, आप तनाव में रहेंगे, किसी का जान का आप बचा रहे हो तो वो झूठ नहीं। तो ये यम के ब्रांचेस थे ये, और फिर उसी तरह हम नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान, यानी कि ये पांचों पे ध्यान रखना है। शौच मतलब साफ, मतलब तन मन और शरीर सब, सब मतलब बाहर का भी सफाई होना चाहिए, मन भी आपका साफ होना चाहिए, आपका तन भी साफ होना चाहिए। तो आपका ये इसके सारे ब्रांचेज हैं नियम के, खुद को जानो कि आप कौन हो। अगर धन अगर आपके पास है तो आप किसी धन से मदद कर दीजिए, आपके पास ज्ञान है तो आप किसी को ज्ञान दे दीजिए, इस उद्देश्य के लिए आप आए हैं तो स्वाध्याय भी कीजिए। कि जैसे यम, नियम, आसन, जो अभी आसन जो मैं बता रहा था कि अपने शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए हर तरह का आसन करेंगे, कि ये आसन करना है, भुजंग आसन करना है, सलभासन करना है, उष्ट्रासन करना है, हनुमान आसन करना है, अर्धउष्ट्रासन करना है, अर्धमत्स्येन्द्रासन करना है, वक्रासन करना है, ये सारे आसन, जितने बहुत सारे आसन है हमारे मतलब किताबों में, या अपने शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी बनाने की
0: जरूरत के हिसाब से,
1: जरूरत के हिसाब से
0: क्षमता संवर्धन,
1: क्षमता बढ़ा सकते हो आप अपने श्वासों पे नियंत्रण रख करके, तो वो प्राणायाम है, जो प्राणों पे नियंत्रण रख दे उसे हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी कि आप विषय वस्तु से हट करके आप अपने जो इंद्रियां हैं उसपे वश में कर लेना। योग सचित्त वृत्ति निरोध, मतलब कि जो हमारी इंद्रियां जो चाह रही है वो ना करके हम अपने आप में अपने को मतलब कि
0: मतलब बाहरी चीजों के प्रति नियंत्रण रखना,
1: नियंत्रण कर देना अपने चित्त को, यही योग है। तो ये आप जो सो प्रत्याहार है। फिर धारणा है, आप धारणा बनाते हैं कि इस तरह का डिवाइन लाइट, ऐसा परमात्मा होंगे, ये होंगे, उस तरह का एक धारणा बना। आप जैसे मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने ये माइक है, तो इसकी धारणा मैंने बना लिया और आंखें बंद कर लिया, अब इसी को मैं क्या कर दूंगा, ध्यान और ये समाधि की तरफ मुझको लेकर के चला जाएगा। इसी ध्यान को इतनी गहराई से अपने मानस पटल पे बैठा देंगे कि ये आपको मोक्ष की तरफ,
0: मोक्ष की तरफ, रूट ऑफ सॉल्वेशन।
1: तो ये जो आठ अंग है और इस आठों अंग पे अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अगर ध्यान दें अपने इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में, तो हम कहीं ना कहीं स्वस्थ रहा जा सकता है। तो अष्टांग योग को अपनाना चाहिए हर।
0: अच्छा, ये तो बातें होगी अष्टांग योग की। अच्छा, ये हमें बताइए अनिल मिश्रा जी की हठ योग किया है?
1: हठ योग देखिए
0: किसे कहते हैं?
1: जी जी जी, सबसे बड़ी बात भ्रांतियां है लोगों में कि हठ योग क्या है। हठ मतलब लोग सबको समझते हैं कि बलपूर्वक किया हुआ कार्य हठ योग। आम भाषा में तो आप भी तो ऐसा ही सोचेंगे,
0: पता चलता है
1: जैसा कि इसका नाम पता चलता है कि ये हठ है, हठी आदमी है, ये हठ योग करता है, मतलब जो काम किया नहीं जा रहा है उसको हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हठ ह का अर्थ होता है हकार, हकार यानी कि आपका सूर्य नाड़ी, हकार का मतलब सूर्य नाड़ी, और ठकार ठ जो है ठकार, ठकार यानी कि चंद्र नाड़ी। तो ये चंद्र नाड़ी और इस सूर्य नाड़ी का जो आपस में घर्षण होता है, जो संजोग होता है, जो मिलता है, तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है जो यहाँ मूलाधार चक्र के पास होती है, वहां जब ये दोनों ईड़ा नाड़ी, बाएं साइड में इंगला नाड़ी और दाहिने साइड में पिंगला नाड़ी, यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, तो आपस में जब ये मिलते हैं
0: और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है।
1: जी, तो हमारा मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो जो है सो उसमें सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर, ये दोनों मिलने के बाद वो जो सोई हुई शक्ति है सुषुम्ना नाड़ी जो बहुत चंचल है उसमें प्रवेश करती है, और जो हमारे शरीर के अंदर में जो षष्ठ चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र या ललना चक्र भी, और ये आपका सहस्त्रार्थ चक्र, ये षष्ठ चक्रों को भेदते हुए ब्रह्म रद्व से आपको मुलाकात करवा देती है, वो है आपका ये हठ योग।
0: बहुत अच्छी बात बताई हठ योग के बारे में
1: जी।
0: अच्छा, अब हम उन बीमारियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे, जैसे मधुमेह या सुगर जिसे हम कहते हैं, या थायराइड हो गया
1: जी, जी।
0: तो इन सब के लिए कौन कौन से आसन और प्राणायाम है जो लाभदायक है, ये आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं।
1: देखिए, हम ये अपने साधकों को ये बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को सुगर है, सुगर भी कई तरीके से होती है, कुछ लोगों को सुगर नहीं भी हो सकता है, बट हम अंग्रेजी दवाइयों का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो सुगर हो जाती है, वैसे सुगर हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे आसन है, जैसे आप वक्रासन का ला सकते हैं अपने दिनचर्या में, अर्धमते संद्रासक ला सकते हैं, मंडुकासन ला सकते हैं, उत्तान मंडुकासन कर सकते हैं आप, अर्धमते संद्रासन कर सकते हैं आप, उसके लिए भुजंग आसन कर सकते हैं, सलभासन कर सकते हैं, जिसपे हमारे पेटों के ऊपर में मणिपुर चक्र के ऊपर में एक खिंचाव आए, एक ट्रक्शन आए, जिससे हमारा पैनक्रियाज सक्रिय हो सके, चूंकि पैनक्रियाज का आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा नियंत्रित कर, तो उस इंसुलिन को हम कैसे नियंत्रित करें, अगर आपका इंसुलिन अगर सही बैलेंस में आ गया, आप युवाओं की जहां तक बात किया था, हमारी ये जो चीज है, हमारा लाइफ स्टाइल जहां गड़बड़ हुआ तो हमारा इंसुलिन गड़बड़ हो जाता है। लोगों का ये है कि पिज्जा बर्गर खाना शुरू किए तो 10 साल के बाद पता चलेगा कि लीवर तो हमारा फैटी हो गया, तो इंसुलिन की मांग खपत ज्यादा बढ़ गई, वो इंसुलिन ज्यादा मात्रा में हमारा पेनक्रियाज से मांगना शुरू कर दिया लीवर को ठीक करने के लिए, तो इंसुलिन का स्तर अनबैलेंस हो जाता है,
0: गिरने
1: तो उसमें
0: लगता है।
1: जी, तो उसमें आसन और प्राणायाम बहुत काम करता है, अगर आप योग मेडिटेशन जी करते हैं
0: जी। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि क्या योग के द्वारा असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है?
1: बहुत हद तक असाध्य रोगों को आप दूर कर सकते हैं, बट आपके जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल होनी चाहिए, कि एक जुनून होना चाहिए कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ऐसे तो अभी वैज्ञानिक रूप में अगर ये नहीं हो पाता है कि असाध्य रोग जो है सो जड़ से खत्म कर दें, लेकिन बहुत सारी चीज हम अपने लाइफ में देखा है कि असाध्य रोग ठीक होते हुए देखा है, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि असाध्य रोग को भी बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है, 100% नहीं कह सकते तो उसे 90% तो हम जरूर कह सकते हैं।
0: जो लोग प्रतिदिन योग करते हैं और जो लोग योग नहीं करते हैं, उनके बीच क्या अंतर होता है?
1: सबसे पहले तो जो लोग योग करते हैं वो बहुत ऊर्जावान होते हैं, वो अपने शरीर को इतना फ्लेक्सिबिलिटी बना रखे हैं और इतनी उनकी अंदर इम्यूनिटी शक्ति ज्यादा होती है कि वो पूरे दिन अगर वो थकते नहीं।
0: आपकी जो योग की यात्रा है वो कैसे प्रारंभ हुई?
1: कि हमारी शुरुआत जब मैं स्कूल टाइम में 6 या 7 क्लास में पढ़ता था, तो हमारे मामा जी MMA में किए हुए थे, उनके पास एक बुक थी योगासन की, तो उस योगासन में मैंने देखा कि शरीर को ऐसे मोड़ा हुआ है, ऐसे मतलब जैसे पश्चिमोत्तासन कर रहे हैं, अर्धचक्रासन है, चक्रासन है, इस तरह की तमाम आसनों को मैं देख करके और मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने शरीर को इस तरह से लचीला बना सकता हूँ। लेकिन इसके क्या लाभ होंगे इसको, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी,
0: उन दिनों पता
1: मुझे नहीं थी। बट मेरी जिज्ञासा थी कि मैं अपने शरीर को ऐसे खिंचाव कर लो और ऐसे मैं अपने शरीर को लचीला बना लू। इसके बाद जी वहां से मेरी शुरुआत हुई। इसके बाद मैं जॉब में गया, जॉब में भी गया तो मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस में मैं

0: बहाली हुआ और मैं 24 साल लोगों का सेवा दिया है, देश का सेवा किया है। और
1: अभी आप वर्तमान में आप बरही में रह रहे हैं?
0: जी, वर्तमान में अभी मैं बरही में लोगों को योग क्लास चला रहा हूं और गांवों में जाके, स्कूलों में और कॉलेजों में जाकर के, आंगनबाड़ियों में जाके, आयुष चिकित्सा विभाग से जुड़कर और पतंजलि से भी जिला सोशल मीडिया प्रभारी हूं मैं हजारीबाग जिले का, और अपने जिले में और अपने प्रखंड में गांव स्तर पे योग का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। और मैंने बहुत सारे असाध्य रोगों को भी हमने दूर किया है। अपने इलाके में 8 लकवा पेशेंट को ठीक कर दिया
1: जी,
0: 8 लकवा पेशेंट को मैंने ठीक किया, इसलिए मुझे विश्वास हो गया।
1: वो कैसा रहा आपका अनुभव जब आप गांव में जाकर उन जटिल बीमारियों का इलाज आपने किया? निशुल्क
0: जी, जी जी, तो मैं जैसे कि तो मेरी जो अवचेतन मन है जो बहुत शक्तिशाली है, अगर मैं किसी व्यक्ति के अंदर में सिर्फ विश्वास दिला दिया,
1: विश्वास जगा
0: कि आप चल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप ये ठीक हो सकते हो, आपके शरीर के अंदर वो शक्ति है, सिर्फ जगने की जरूरत है, ऐसा मैंने विश्वास दिलाया। मैं अपने मन से उनके अवचेतन मन तक जाने की कोशिश किया और सारे रोग को मैंने दूर किया।
1: कार्यक्रम से जाने का समय भी हो चला है
0: जी, जी।
1: तो अनिल जी, आप हमें बताइए कि मतलब उन श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग के माध्यम से वो कैसे निरोग और स्वस्थ।
0: जो श्रोता हमारी बातों को सुन रहे हैं, उन लोगों से एक ही आग्रह मैं करता हूं कि अपने दिनचर्या में योग को जरूर अपनाएं। तो सुबह उठे, अपने दिनचर्या में तेल नेति क्रिया करें, यानी कि दोनों ईड़ा और पिंगला नाड़ी को खोल लें, यानी कि श्वास आप पूरे दिन सही तरीके से ले सके तो आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे, आपके उससे सारे जितने भी कोशिका हैं वो गदगद हो सकेगी, हमारे ब्रेन
1: नाड़ियां हैं वो
0: जो 80 मिलियन न्यूरॉन्स है वो गदगद हो सकेंगे, सारी शरीर के सेल आपके आपको दुआ देंगे चूंकि आपने योग किया है, उनको अच्छा ऑक्सीजन पहुंचाया है, एनर्जी को सेव कर सके और आपको ऊर्जावान बना सके, शक्तिशाली बना सके, आपको निरोग बना सके। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग योग और आसन प्राणायाम का सहारा जरूर लें, यही मैं कहना चाहता हूं अपने साधकों से
1: जी। तो सभी योग करें, निरोग रहें, और यही जो है सो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। और अनिल कुमार मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने अपना बहुमूल्य और बेशकीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों और प्यारे श्रोताओं, आपने सुना योग किस तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य का समाधान है, इस बारे में बता रहे थे अनिल कुमार, उनसे बातें की थी परमेंद्र कुमार मिश्रा ने। दोस्तों, आज तो दुनिया विश्व शरणार्थी दिवस मना रही है, लेकिन कल यानी 21 जून को विश्व योगा दिवस के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इससे अंदाजा होता है कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। योग स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ता कदम भी है। आइए रुख बदलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों गीत तो आपने सुना, अब आइए डालते हैं एक नजर आज के दिन का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम पर। इस सिलसिले में पहली बात आती है सन 1858 की। आज ही के दिन ग्वालियर के किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा और इसके साथ ही सिपाही विद्रोह का अंत हुआ था। और आज ही के दिन 20 जून को 1873 ईस्वी में भारत में YMCA की स्थापना हुई थी। 1887 ईस्वी में आज ही के दिन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस, जो अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, लोगों के लिए खुला था। 1916 ईस्वी में आज ही के दिन पुणे में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और 1990 ईस्वी में आज ही के दिन ईरान में आए भूकंप से लगभग 40,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1994 में आज ही के दिन ईरान की मस्जिद में बम विस्फोट में 70 लोगों की मौत हो गई थी। और 1998 में आज ही के दिन विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर कैमिक को हराकर 5वां फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीता था। काहिरा में G15 समूह 15 देशों का 10वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था आज ही के दिन सन 2000 ईस्वी में। सन 2001 ईस्वी में आज ही के दिन जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। और सन 2002 ईस्वी में आज ही के दिन पाकिस्तान ने अशरफ जहांगीर काजी को अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया था। आज के दिन सन 2002 ईस्वी में अमेरिकी कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार अपराधियों की फांसी की सजा पर रोक लगाई थी। रूस मालवाहक यान M53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था आज के दिन सन 2005 ईस्वी में। और सन 2006 ईस्वी में आज के दिन जापान ने अपनी सेनाओं को इराक से वापस बुलाने का निर्णय लिया था। प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी आज ही के दिन सन 2014 ईस्वी में।

0: कसम आऊंगा।
1: और अब डालते हैं एक नजर आज के मौसम पर। तो तापमान पर पहले हम गौर करते हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान होगा 22.8 डिग्री सेल्सियस। आज भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना है और तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अखबारात की सुर्खियों पर हम नजर डालते हैं तो ये हजारीबाग भास्कर की खबर है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज 2027 में पूरा होगा, इसके लिए 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी की एक सुर्खी है, जनता दरबार में डीसी ने सुनी समस्या, कई मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। अवैध शराब के विरुद्ध कटकमदाग में छापेमारी की गई, जिसमें छापेमारी में 600 किलो जावा महुआ नष्ट हुआ और 150 लीटर शराब जब्त किया गया। और एक खबर है प्रभात

खबर की कि शहरों में विकास के लिए केंद्र सरकार 7600 करोड़ रुपए देगी। और एक सुर्खी है, नीट यूजी पुनर्परीक्षा के संबंध में ये परीक्षा कल होगा। एनटीए ने अभ्यर्थियों के लिए जारी किया परामर्श और इसे डाउनलोड किए जा सकते हैं न्यू एडमिट कार्ड, जिसके जरिए केंद्र व रोल नंबर में बदलाव होने की संभावना भी मुमकिन है।

एक खबर दैनिक जागरण की है, हाथियों के कॉरिडोर में वन विभाग की नाकेबंदी हुई है। इसके जरिए हाथियों से होने वाले नुकसान पर काबू पाया जा सकता है। दक्षिणी पेरावल में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन कल किया जाएगा और CHC में रक्तदान शिविर 22 को लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। और एक खबर दैनिक भास्कर की है, हजारीबाग में चला नशा विरोधी अभियान। और ये प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वारिस का ये गीत। आप उठाइए इस गीत का लुत्फ और दीजिए प्रोग्राम से हमें इजाजत। नमस्कार।

हेलो हजारीबाग, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 11 बजने को है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से। अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी

0: GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म पड़ोसन से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगीराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे विद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगीराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहां से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
0: जी।
1: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
0: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए, है ना। अच्छा मुझे बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
1: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
0: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय?
1: थोड़ा सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट
0: जी, कम से कम 20
1: कम से कम 20 मिनट।
0: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा?
1: दिल से निकालें तो 45 मिनट, एक घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
0: क्या बात है
1: जी
0: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय जिस व्यक्ति के पास वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है वो क्या क्या करे?
1: देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला है
0: जी,
1: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
0: जी
1: से रिलेटेड।
0: हाँ,
1: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सीटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन
0: जी। तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी है? रामरी, शीतली
1: जी जी जी,
0: है ना।
1: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे रोदन क्रिया कर लीजिए, वस्त्रिका करके अपने फेफड़े
0: सबसे पहले भस्त्रिका करते हैं,
1: कपालभाती,
0: सबसे पहले कपालभाती जी,
1: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी,
0: इतने सारे करने
1: हैं। हाँ, अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
0: अच्छा,
1: ये पूरा पैकेज हो गया
0: जी।
1: ये
0: जी, जी।
1: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
0: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे
1: जी,
0: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
1: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है
0: जी,
1: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है।
0: अच्छा,
1: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको।
0: अच्छा,
1: हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं
0: जी जी,
1: जिसमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है
0: जी,
1: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं
0: जी।
1: और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तक जग भी हुआ है,

0: लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मूड ऑफ और ऑन है। तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: अच्छा।
0: जो हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते, जैसे इंजन में व्हील ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है
1: जी।
0: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
1: अब देखिए ना, हम रेडियो पर हैं
0: जी,
1: तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है।
0: हाँ,
1: करके दिखा नहीं सकते,
0: दिखा नहीं सकते।
1: पर भ्रामरी प्राणायाम वही है ना, जिसमें उंगलियों हाँ, से आंखों
0: को बंद करते हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है
1: जी,
0: मुंह बंद रखना है
1: हाँ,
0: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
1: जी,
0: और मुंह बंद करके ही नाक से श्वास को छोड़ना है और हमिंग करना,
1: हमिंग
0: बटरफ्लाई की तरह।

0: जी, और उससे जो कंपन होते हैं,
1: कंपन होगा अपने सिर में, तो जब वहाँ कंपन होता है तो वहाँ से फिर वो सीक्रेशन होता है
0: जी,
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है, तो प्राणायाम की बात हुई, ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है
1: जी।
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12-25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए?
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी,
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा,
1: योग का मतलब ही है जोड़ना
0: जी,
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपनी लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से, 12 राइट लेग से, तो एक राउंड आप पहला दिन करिए।
0: अच्छा,
1: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप 2-3 राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए,
1: बढ़ाते जाइए।
0: नहीं, कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कूछ
1: ये सही कर रहे हैं
0: जी।
1: तो जोश में आकर होश नहीं खोना है,
0: बिल्कुल।
1: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं
0: जी,
1: योग को धीरे धीरे जोड़ना है
0: जी। सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है?
1: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10-15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है,
1: काफी होता है।
0: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूँ। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या है। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना?
1: जी जी जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
0: जी,
1: हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है, इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंग आसन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम जो सूर्य नमस्कार किया जाता है वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
0: मिल जाता है जी।
1: ये तो
0: सबसे इम्पोर्टेंट बात है
1: सूर्य नमस्कार,
0: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं।
1: और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
0: जी,
1: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब से,
0: और आपकी जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
1: उसके अनुसार
0: बाकायदा ईमानदारी से बताना है।
1: जिनकी एज ज्यादा है उनको ध्यान में रखना है।
0: मैं वही पूछने आ रहा था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
1: जी,
0: तो वो क्या करे और क्या ना करे?
1: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे जो कि एज उनकी काफी है, लेकिन बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं
0: जी।
1: क्यों कर लेते हैं? कि वो शुरू से ही
0: नियमित रूप से करते आए हैं,
1: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह वो अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है
0: जी। मैं समझ गया
1: जी।
0: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए?
1: कोई भी चीज इसमें ऐसा मनाही नहीं, लेकिन हर योग को, कोई अगर रोगी है, कोई व्याध से बाधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीजें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है पहले। कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो न करते हुए फिर उस बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं, लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
1: जी,
0: और दिन दिन भर बैठे हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक लिया, चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं, टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
1: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं
0: जी,
1: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं, सबका अपना होना चाहिए सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीज़ें होती जा रहे हैं। तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है, जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है। तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
0: जी
1: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके, ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत
0: ही, आपने इस तरह से वर्गीकरण कर लिया
1: जी,
0: अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के
1: सभी स्वस्थ रहे
0: तय कर लिया
1: जी।
0: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं।
1: जी, जी।
0: विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा है, बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है, क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
1: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति, और जब से कोरोना का समय आया
0: जी
1: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है, और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
0: वाह, अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते हैं
1: जी जी,
0: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाएं पिएं, कैसे जिएं कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके?
1: जी, रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
0: चमत्कार
1: और संभव नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
0: कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं,
1: हाँ, 5 साल में 2 साल में इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा
0: जी,
1: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे, योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से। उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से।
0: अच्छा,
1: क्योंकि सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है
0: जी।
1: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है। तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियां अमीनों की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन।
0: बिल्कुल, तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
1: कहीं भी
0: स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर पे हो,
1: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन
0: जी।
1: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं और सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
1: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है
0: जी,
1: मस्तिष्क से ही
0: जी।
1: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं तो आप बाहर की चीजों को आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया। तो कहने वाला कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
0: जरूरत से ज्यादा नहीं।
1: जी, जरूरत से ज्यादा नहीं
0: जी। आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति? और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
1: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे, लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं गुरुजी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है आप देखेंगे तो फिट ही रहते हैं
0: जी।
1: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी, जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं और वो सब चीज़ों को समझते हैं और हमसे आपसे ज़्यादा वो जागरूक हैं। और उनको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया है और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहां स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि मोबाइल हाथ में है, अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है
1: जी,
0: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए।
1: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है और मैं योगी ही योगीराज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को हों चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है, लैपटॉप, स्क्रीन का जो जमाना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपनी लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है और किस फील्ड में उससे हमें क्या लाभ है उसको जोड़ना है और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या जरूरी है। स्टडी, बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी, एक और बहुत जरूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ, वह है हमारी महिलाएं। उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियां हैं
1: जी,
0: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है, उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं। तो वो घर भी संभालती हैं
1: जी,
0: बच्चों को भी ध्यान देना है और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नजरअंदाज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है। और रही बात उनको खुद की अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियां हैं, हमारी नारी शक्ति है, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि इतना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालकर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज्यादा चैलेंजेज होते हैं, तरह तरह की,
0: मन भी कई बार अशांत रहता है,
1: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीजें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियां हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीजें हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो योग मेडिटेशन।
0: और क्या महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
1: क्यों नहीं कर सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती है, करती हैं
0: जी,
1: लेकिन ज्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती है, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती है,
0: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा है।
1: हाँ, सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फायदा होता है
0: जी,
1: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है
0: जी,
1: तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
0: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे, पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
1: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं,
0: मतलब हर साल 21 जून को करते हैं
1: 21 जून को साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के,
0: हाँ,
1: योगा मैट भी खरीद लेते हैं,
0: हाँ,
1: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं
0: जी।
1: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें
0: जी,
1: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें, यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है।
0: और अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे
1: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
0: जी,
1: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
0: बिल्कुल।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे। अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली 6 इस फिल्म से। ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं। मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की, लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुंझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया, और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज्यादा चाहने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतजार ज्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताज़ा करना चाहें तो लिख भेजें बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

0: दी है मॉक ड्रिल। झारखंड में भी खास मुस्तैदी। रांची के नामकुम सैन्य अस्पताल में सेना और वायुसेना का 5 दिवसीय मेगा नेत्र शिविर संपन्न किया गया। 300 से अधिक सफल ऑपरेशन, रक्षा राज्य मंत्री ने सराहा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी विमान सेवाएं। देवघर दिल्ली नाइट फ्लाइट भी होगी निरस्त। राज्य में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। लोहरदगा में ट्रक की टक्कर से 3 भाई बहनों और गुमला में कार दुर्घटना में दूल्हे के पिता की मौत। और जमशेदपुर में टाटा स्टील ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप विजेता टीम के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह मॉक ड्रिल की जा रही है। इधर नीट परीक्षा को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारी की गई है। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। इस बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और आसपास की फोटोकॉपी दुकानों, साइबर कैफे तथा कोचिंग सेंटरों की कड़ी निगरानी की जाएगी। उधर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। धनबाद जिले में कुल 7 केंद्रों पर नीट की पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि नीट यूजी पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: लास्ट बार भी नीट एग्जाम हुआ, बहुत फेयरली हुआ और हम लोग इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे सेंटर्स में जो प्रोटोकॉल आया है एनटीए की तरफ से, कुछ गोपनीय प्रोटोकॉल भी है, वो सब फॉलो हम लोग कर रहे हैं। सेंटर्स बहुत ज्यादा नहीं हमारे यहाँ, बट फिर भी हम लोग सतर्क हैं और हम लोग के सभी पदाधिकारी सभी केंद्रों पर स्वयं जाकर एक बार विजिट करके देखेंगे कि कोई कमी नहीं रह जाए और त्रुटि रहित परीक्षा को इस बार निभाएंगे।
0: भारतीय सेना और वायुसेना ने रांची के नामकुम सैन्य अस्पताल में ऑपरेशन दृष्टि के तहत 9वें मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया। 5 दिनों तक चले इस विशेष शिविर में 2500 से अधिक मरीजों की जांच की गई। एक रिपोर्ट।
2: रांची के सैन्य अस्पताल में आयोजित 9वें मेगा शिविर में आंखों की रोशनी लौटाने वाली 300 से अधिक जटिल सर्जिकल प्रक्रियाएं की गई, जिनमें 260 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन शामिल हैं। इस मानवीय पहल का सीधा लाभ क्षेत्र के 100 से अधिक वंचित आदिवासी मरीजों को मिला। शिविर के समापन समारोह में पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सेना चिकित्सा कोर की सराहना करते हुए इसे सेवा परमो धर्म के संकल्प का जीवंत उदाहरण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि ऑपरेशन दृष्टि के तहत अब तक देश भर में 75,000 से अधिक मरीजों की जांच और 3,000 से अधिक सफल सर्जरी की जा चुकी है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की रांची हैदराबाद और रांची दिल्ली उड़ानें तथा इंडिगो की रांची कोलकाता और रांची हैदराबाद सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली की रात वाली फ्लाइट भी 1 जुलाई से बंद होगी, जबकि देवघर बंगलुरु फ्लाइट अब सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही चलेगी, जो पहले प्रतिदिन उपलब्ध थी। गिरिडीह पहुंचे राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने पिछले 12 वर्षों को देश के लिए विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता का काल बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के शहीद चौक स्थित

0: अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। लोहरदगा के मिशन चौक के पास तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक की चपेट में आने से शादी समारोह में जा रहे 3 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। वहीं दम तोड़ दिया और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कल यानी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। विस्तृत विवरण के साथ रांची से हमारी संवाददाता।
1: इस बार योग दिवस पर राज्य में एक विशेष व्यवस्था की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के आदेशानुसार कल रविवार की छुट्टी होने के बावजूद राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल सामान्य कार्य दिवस की तरह खुलेंगे। इस सामूहिक आयोजन में प्रदेश के लगभग 50 लाख विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक साथ योग प्रोटोकॉल से जुड़ने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य के सभी ग्रामीण व शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष निःशुल्क योग शिविर लगाए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित योग गुरु आम लोगों को सामान्य योग प्रोटोकॉल के तहत प्राणायाम और आसनों का अभ्यास कराएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। लातेहार के टाउन हॉल में आयोजित 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026 का समापन हुआ। लातेहार जिला पुलिस की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। समापन समारोह में मौजूद पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी किशोर कौशल ने कहा कि इस ड्यूटी मीट का मूल उद्देश्य पुलिस की पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देना है।
2: 3 दिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट जो पलामू क्षेत्र की थी, उस समापन हुआ, जिसमें कि तीनों जिले के हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मीगण शामिल हुए। ड्यूटी मीट का उद्देश्य यही होता है कि जो पुलिस की पेशेवर दक्षता है वो किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, और जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उन्होंने सीखा है, किस प्रकार से वो क्षेत्र में भी लागू कर पा रहे हैं।
0: टाटा स्टील ने जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी एकेडमी के कैडेट्स आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए सम्मानित किया है। जापान के काकामिगाहारा में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर पूरे 10 साल बाद इस प्रतिष्ठित खिताब पर दोबारा कब्जा जमाया। और अब अंत में मुख्य समाचार। एनटीए आज देश भर में नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए कर रही है मॉक ड्रिल। झारखंड में भी खास मुस्तैदी। रांची के नामकुम सैन्य अस्पताल में सेना और वायुसेना का 5 दिवसीय मेगा नेत्र शिविर संपन्न किया गया। 300 से अधिक सफल ऑपरेशन रक्षा राज्य मंत्री ने सराहा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी विमान सेवाएं। देवघर दिल्ली नाइट फ्लाइट भी होगी निरस्त। राज्य में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। लोहरदगा में ट्रक की टक्कर से 3 भाई बहनों और गुमला में कार दुर्घटना में दूल्हे के पिता ने गंवाई जान। और जमशेदपुर में टाटा स्टील ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप विजेता टीम के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को किया सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताजा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नजर आ रही है, इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है। और गजल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल है। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम सफर में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग न जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी। बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी है, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियां हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियां हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफर में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतजार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफर।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहां का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहां पे गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुँच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बाराखंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियां, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से जरूर बचें। बिल्कुल, जो भी जरूरी एहतियात है उसे बरतें और जरूर जरूर बचें इन सब चीजों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसे उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और अब ये गीत इस फेहरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाए लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सजती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है, नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।

0: का साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबैस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा उड़ीसा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू होगा।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16

0: फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग पर एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
6: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमति फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से, संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से, अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है, इस पार्क में अकेले अकेले। लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं झूठ मूठ। चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। आहिस्ता, इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
3: जुडू, बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
4: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
3: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
4: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
3: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
4: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
5: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
3: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
3: ठहरो। कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
3: सांझ से, बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक।
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
4: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं, तो नहीं देखी।
3: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
3: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी।
3: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
3: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
3: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
4: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कभी नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं।
3: हाँ जाओ जाओ।
4: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
3: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
4: ओह।

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की,

0: मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ। ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: ओ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ। सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोलोयस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे छोड़ भी, पागल कहीं
2: का। वासी,
0: जिनी।
1: हाँ, आ बेटी अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से है। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा, होगी कोई। पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में। यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
2: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
2: हाँ
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
2: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
2: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
2: कुछ भी नहीं समझते?
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
2: सारी बातें मुंह से कहीं नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
2: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
2: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
2: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
2: सरा साव

0: सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
1: जिनी हाथ छोड़ो, शायद माँ आ रही है।
0: अच्छा तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
0: हाँ हाँ हाँ मौसी हो गई।
2: अरे थोड़ी चाय तो पी कर जा।
0: नहीं आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: चरित्र। विल यू स्टॉप टू डू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी
0: है।
1: गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए, हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप सिलेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
5: नमस्कार।
6: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
5: नमस्कार।
6: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
6: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
6: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
7: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
6: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
6: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
2: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
2: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
2: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
2: अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
2: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग गुप्त समिति?
2: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
2: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
0: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
2: कौन कौन कौन हो सकता है? कौन है? कौन कौन है?
0: अरे ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयांगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अरे कैसे हुआ ऐसा?
0: क्या बात है,
2: क्या हुआ? ओ लगता खून,
0: खून ये क्या है? किसने ऐसा किया?
4: पुलिस ने।
2: पुलिस ने?
4: ईश्वर, यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दल बल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
2: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
4: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
2: ठहरिए, पहले पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
0: बांधो, बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयांगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना
2: होगा। कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
4: जरूर चल सकूंगा।
0: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
5: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
2: बाबू, बाबू दरवाजा जरा देर से खोलना।
5: अच्छा, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ।
6: हैंड्स अप।
0: आप लोग
6: जुलूम अंदर देखो, ये जल्दी क्विक, कहाँ है ये सब?
7: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
5: जी हाँ सर।
7: ये कौन है? सर वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, जेम्स पिस्से।
8: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
5: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
7: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहाँ गया?
5: यहाँ तो कोई भी नहीं आया सर।
7: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
8: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
2: मैं सच कह रहा हूँ सर, यहाँ कोई नहीं है।
7: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूँ। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
8: मिल गया सर।
7: क्या मिल गया?
8: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
7: यू आर राइट
8: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
7: तो मिस्टर
9: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, आप सभी अभी एक विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके। चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
2: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, in the district and block levels and Gram Panchayat levels, with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री

0: जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आरएन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: एब्सोल्युटली टू सी दीज मिनिस्टर्स दैट द पीपल आर वेट फॉर एंड द पीपल हैव एक्चुअली वोटेड फॉर दीज मिनिस्टर्स हु विल नाउ बी ग्रेसिंग द स्टेज। It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow. He had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country developed. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the KVK's ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, This promise never loses its importance.
0: बिल्कुल। तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. Addressing a public gathering at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, the Prime Minister extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village Paharpur. He announced that Paharpur would be developed as a Suryagram or solar village with renewable energy-based infrastructure and modern public services. The Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
1: साथियों, हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है. ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहां नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं. 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है.
0: Union Home Minister Amit Shah today reiterated the government's commitment to national security and effective border management, stating that efforts to curb illegal infiltration would continue with determination. Mr. Shah said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has witnessed significant progress over the past 12 years in the fields of development, cultural rejuvenation, national security and global recognition. He said these years would be remembered as a period of transformative growth in the country's history. Addressing a public gathering after inaugurating the Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur worth over 1,445 crore rupees, Mr. Shah said that the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. The National Testing Agency, NTA, is conducting a nationwide mock drill as part of preparations for the NEET UG 2026 re-examination, which will be held tomorrow. The exercise, which began at 9 a.m., will continue through the day. More than 2.5 lakh security personnel are participating in the drill, being carried out across examination centres nationwide. In Delhi, a mock drill was conducted at examination centres in the Delhi-Cant area and Ashok Vihar Phase 2. The NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.7 lakh 9 candidates. The government has banned the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination drugs for human use with immediate effect. The move follows a Supreme Court-directed review by an expert committee set up by the Drugs Technical Advisory Board, which found the drug combinations lacked therapeutic justification and could pose health risks. The banned products include certain dermatological pain relief and antibiotic-based medicines. An Israeli airstrike struck the Jabal al-Rahi area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
2: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय आपसे कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
3: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
2: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को यह दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
3: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, दिस इज द प्रॉमिस विद विच द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्मड इन बंगाल आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ इनजस्टिस। नाउ वी सी दैट द गवर्नमेंट एंड दिस विल बी अ गवर्नमेंट विच विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ डबल इंजन। एंड टुडे इज फंक्शन सिद्धार्थ, इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट वी आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज द 23rd इंस्टॉलमेंट, दिस इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर। We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat, we see no middlemen, we see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country, along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi,
2: Jee.
3: The following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
2: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है. और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा. 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी. और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं. इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी. तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
3: एब्सोल्युटली, एज यू सेड.

0: डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें, ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आप आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो, आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल व्हिच इज सशक्त बनाना, दैट इज टू मेक द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एम्पावर्ड। हाउ डू यू मेक देम एम्पावर्ड एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट वाज प्रोबब्ली द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही हैड इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल इंडिया मिशन। बिकॉज इमेजिन अ फार्मर सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑफ अ विलेज समवेयर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, बट ही नोज एंड ही ट्रस्ट्स द गवर्नमेंट, एंड देन he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya, how important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
0: इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal Shri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal Shri Subindu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय. और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी.
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए. और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है. और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला,
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है. और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित, और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. भारत केसरी, लौह प्रणाम. स्वामी प्रणवानंद, लौह प्रणाम. सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबसे जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटि भारतवासीर হৃদয়ের অন্তরের আত্মীয়, যিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন না, প্রধান সেবক বলেন, উনাকে বাবা তারকনাথের পুণ্যভূমি তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি প্রণাম, শ্রদ্ধা এবং স্বাগত জানাচ্ছি. আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন এই রাজ্যের অত্যন্ত লোকপ্রিয় একজন রাষ্ট্রবাদী রাজ্যপাল

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country, various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways, so many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर।

0: In the market, all these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
1: जी हाँ प्रधानमंत्री अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
0: And Siddharth, more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे, तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया।

इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई।
सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा

आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है। माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा, वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष का शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए
एक और

और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जारगाम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है।
विकसित भारत के

0: संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:33 हुए हैं। अब सुनिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के अलका बहन दने से जोहार प्रणाम और साथ ही यशमिंदर भाई तो तोरा भी जोहार प्रणाम।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के मां बंदने से जोहार प्रणाम करो ये और कार्यक्रम में शामिल अलका बहन तोहरो भी जोहार।
0: देखा हमने कार्यक्रम में हाजिर हो चुके है, शामिल हो चुके है किसान भाई बहन से बातचीत करे वास्ते, तो कि उनका हाल चाल कैसन हन, किस तरीका से उनकर खेती बाड़ी के काम चले थे, इनके बारे में भी बातचीत करबे। और लेकिन सबसे पहले आज हमने बात करबे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जे आज प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी पता चले कि 23वां किस्त मिल चुका है। और ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि जी योजना है यशमिंदर भाई, ये किसान भाई बहन के आर्थिक सहायता के वास्ते शुरू करल गेल है। यानी देखबा के बहुत किसान भाई बहन के खेती करे वास्ते जैसे बीज लेना हो या खाद लेना हो या फिर बहुत तरह के खर्च आवे है, जेकर में बहुत किसान भाई बहन के पास कभी पैसा के दिक्कत हो जाए है या कर्ज लिए में दिक्कत हो जाए है, तो ई वास्ते आर्थिक सहायता दिए वास्ते इस योजना के चलवल गेल।
1: बिल्कुल देखो सही बात बतेला तू कि आज हथिन से हम इनके जब माननीय प्रधानमंत्री हथिन और जे आज 23वीं किस्त जो है से जारी करल थीन है किसान सम्मान निधि योजना के, तो किसान भाई बहन से हम कहल चाहब कि सरकार के एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना है जेकर के तहत जो है से देश के करीब करीब सब किसान भाई बहन के जो है से प्रति वर्ष 6,000 रुपया मिलो है, यानी 2,000 रुपया हर 4 महीना में। तो एक कहा है कि ये सहायता राशि जो है से DBT के माध्यम से डायरेक्ट किसान भाई बहन के खाता में जाए और 4-4 महीना के अंतराल पर ये 3 सम्मान किस्त में मिलो है। और एक में कहा है कि कुछ जो मुख्य विशेष वो है कि कहा है कि वित्तीय सहायता जो है सालाना में 6,000 मिलो है। और एक कहा है कि जो किसान भाई बहन के जब पात्रता है, जो अगर किसान भाई बहन अगर चाहो भी हथिन या लवे के जो उनका इच्छा है, तो एक में कुछ पात्रता है जो किसान भाई बहन की पूरा करे पड़ते है। जैसे कहा है कि योजना के लाभ उठाए खातिर किसान भाई बहन के पास कृषि योग्य भूमि होना बहुत जरूरी है। एक बात कहा है कि जो किसान परिवार में हथिन, पति पत्नी और नाबालिग बच्चा शामिल हो थीन। दूसरा बात कहा है कि एकर में जो है से किसान भाई बहन अगर चाहथिन तो भाई उन्नत बीज खातिर अगर कहा जा सको हो कि मुख्य रूप से कहा जा सको कि जब बहुत सीजन से पैसा किसान भाई बहन के मिलो है PM किसान सम्मान निधि योजना, जैसे देखो अभी अब खरीफ फसल की तैयारी हो रहा है, तो भाई ऐसा समय में किसान भाई बहन के पैसा के अकाउंट में गल है, जरूरत मिल रहा है, ये किसान भाई बहन के बहुत एक तरह से समझ जाओ कि वरदान साबित भले किसान भाई बहन के।
0: बिल्कुल, जब समय पर पैसा होता तो थोड़ा बहुत
1: बिल्कुल
0: समय लगता की सचमुच की वरदान ही है।
1: हाँ हाँ।
0: और एक बात है कि इस योजना के उद्देश्य है कि हमने के किसान भाई बहन के जो खेती से जुड़ल होकर जरूरत के पूरा करना और उनकर आय के मजबूत बनाना।
1: हाँ हाँ।
0: और एक साथ में है कि ई वास्ते बैंक के खाता में भेजल जाए है ताकि किसी भी तरीका के मतलब पारदर्शिता बनल रहे, किसी भी तरीका के कोई समस्या ना हो। लेकिन किसान भाई बहन के अगर योजना के लाभ उठाते रहना है तो समय समय पर अपन जे ई KYC और जे जरूरी दस्तावेज है, जरूरी कागजात है, ओकरा अपडेट करते रहना चाहिए ताकि योजना के लाभ बिना कोई बाधा के मिलते रहे। तो अभी हमने रुकिए, सुनिए एगो जरूरी संदेश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: उपज बढ़ावे खातिर सबसे सबसे महत्वपूर्ण हो है एक में कहा है कि उच्च गुणवत्ता वाला बीज। और जब उच्च गुणवत्ता वाला बीज अगर हमें न चयन करो, ये किसान भाई न चयन करो थे, तो उनका खातिर परेशानी का हुआ है कि हमारा समय भी पार हो जाए और जो फसल उगावे के समय है वो है जैसे कहा जा सको नक्षत्र जो हुआ है, तो उस नक्षत्र के मुताबिक अगर हम इन बीज के चयन या कोई भी रोपाई या कोई भी बुआई न कर पाई है और ससमय जो है से अपन बीज के चयन न करवाए तो किसान भाई बहन जी से बहुत नुकसान जाते हैं ना, पूरा एक साल के नुकसान उनके पास हो जाए।
1: बिल्कुल, यानी कि अगर हमने कि अच्छा फसल लेना है तो हमने कि जो बीज लेना है वो हमेशा प्रमाणित दुकान से ही लेना चाहिए। हाँ। ताकि बीज अच्छा मिले। तो देखा आज हमने के को जानकारी लेकर एले ही है किसान भाई बहन के सुनावे वास्ते यशमिंदर भाई कि ओल अभी जो महिला किसान है हाँ, वो अपन अनुभव बता रहे थे, वो लगेले थे ओल हल्दी अदरक एवं भिंडी के खेती करे थे
0: और जो हमें से बातचीत कर लेती थी अलका कुमार
1: और महिला किसान थी सोनी देवी। तो सुनल जाए जानकारी भरल बातचीत।
2: नमस्कार किसान भाई बहन, हम समय समय पर आप सभी को ऐसे किसान भाई बहनों से मिलाते हैं जो अपने अनुभव को बताते हैं कि वो खेती कैसे कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ एक महिला किसान जुड़ी हुई हैं जो ये बताएंगी कि वो क्या क्या अपनी बारी में या खेत में लगाई हैं और किस तरीका से लगाई हैं, कैसे देखभाल कर रही हैं और इसके साथ वो क्या काम भी कर रही हैं। तो जानते हैं सबसे पहले इनका परिचय। आपका हमारे इस किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है?
3: सोनी।
2: सोनी नाम है। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं?
3: गौतम विहार कॉलोनी।
2: गौतम विहार कॉलोनी में रहती हैं। तो आप खेती बाड़ी का काम करती हैं ना?
3: हाँ, खेती बाड़ी करते हैं।
2: अच्छा, तो अभी क्या क्या आप लगाई हैं?
3: आदी लगाए हैं।
2: हाँ,
3: ओल लगाए हैं।
2: आदी, ओल और कुछ भी लगाए?
3: हल्दी लगाए हैं।
2: अच्छा, तो आदी, ओल और हल्दी अपने घर में लगाई हैं, बाड़ी में लगाई हैं?
3: बाड़ी में लगाए हैं।
2: अच्छा, तो ये सब जो आदी, ओल और ये हल्दी, और अभी उसमें क्या हो रहा है?
3: ओकरा में अब ये सब कोड़ के
2: हाँ
3: पास दे देंगे।
2: अच्छा, जो चैत में लगाई हैं तो अभी तक के बीच में आपको फिर से पास देना होगा?
3: हाँ, अभी देंगे।
2: अच्छा, इसको लगाने के लिए क्या क्या करना होता है? आदी, ओल और हल्दी एक ही टाइम लगाती हैं?
3: हाँ हाँ।
2: तो लगाने के समय में क्या करना होता है?
3: तो कोड़ना पड़ता है
2: पहले जमीन तैयार।
3: हाँ, जब जमीन तैयार करके खेत तैयार करते हैं
2: हाँ,
3: तो ओकरा बाद में अथी पारी घींच के ओकरा में रोपते हैं गाढ़ा कोड़ के।
2: अच्छा, तो पहले जैसे कि पास करके मतलब हाँ, क्यारी बना लेते हैं?
3: क्यारी बना लेते हैं।
2: अच्छा,
3: तब रोपते हैं।
2: तो जैसे कि आप सबसे पहले बताइए कि ओल लगाने के लिए क्या करना होता है?
3: ओल लगाने के लिए खेत बनाने पड़ता है।
2: अच्छा,
3: और गहरा कोड़ना पड़ता है एक हाथ,
2: एक एक हाथ गहरा खोदती हैं?
3: हाँ, खोदते हैं। हाँ? ओकरे में गोबर देके अब बैठा देते हैं।
2: अच्छा, तो उसका जो बीज रहता है वो कैसे क्या करते हैं?
3: ओल के काट के लगा देते हैं, एगो एगो के चार फाग करके,
2: एक ओल को चार फाग करके।
3: हाँ, चार फाग करके
2: अब एक हाथ गड्ढा कर देते हैं।
3: हाँ,
2: और उसके बाद उसको
3: लगा देते हैं।
2: अच्छा, और फिर लगाने के बाद उसमें क्या करना होता है?
3: पानी उनी पटाते हैं।
2: अच्छा, कितने दिनों में पानी पटाने की जरूरत होती है?
3: मनो एक हफ्ता में।
2: एक हफ्ता में पटाते हैं?
3: हाँ, इतवार के इतवार।
2: अच्छा, इतवार के इतवार आप दिन बांटी हैं इतवार के इतवार।
3: हाँ,
2: तो ओल के लिए जैसे एक मतलब एक पूरा ओल में चार भाग में बांट देती है, एक एक भाग करके लगा देते हैं।
3: लगा देते हैं।
2: अच्छा, और उसके बाद जैसे आप हल्दी के लिए क्या करती हैं?
3: हल्दी के लिए वैसे ही रोप देते हैं, अति आलू के अति पारी घींच के,
2: आलू की तरह
3: पारी घींच के वह में लगाते हैं।
2: अच्छा, तो उसमें हल्दी के लिए जो बीज होता है उसके लिए क्या मतलब किस तरीका से करती हैं?
3: वो हल्दी मन वह पुराना हल्दी रह जाता है कच्चा।
2: हाँ,
3: वह अंकुरी हो जाता है
2: उसी को आप लगाते हैं?
3: उसी के लगा देते हैं।
2: अच्छा, जो पुराना हल्दी रखा हुआ है वो अंकुर जाता
3: हाँ,
2: है तो उसको लगाते
3: हैं। लगा देते
2: उसको
3: हैं।
2: भी कितना मतलब उसके लिए भी जमीन तैयार करने के लिए क्या कुछ खास करना पड़ता
3: हाँ,
2: है?
3: वो करना पड़ता है।
2: कैसे क्या करना होता है?
3: सब जोत के मनो सब क्यारी बनावे पड़ता है हाँ, बराबर करके हाँ, क्यारी बना के फिर पारी घींच के तरोपे पड़ता है।
2: अच्छा, पारी बना के खींच के रोना
3: हाँ, तो ओकरा में गोबर डालना पड़ता है।
2: तो आप ज्यादातर गोबर खाद का उपयोग करते हैं, बाकी और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करती?
3: ना।
2: अच्छा, तो जैसे ओल भी हो गया, हल्दी भी हो गया, अदरक के लिए भी क्या हाँ, करना होता है?
3: अदरक भी वैसी ही आदिये जैसा।
2: अच्छा,
3: हल्दी जैसा।
2: उसका भी बीज के लिए पुराना बीज ही हाँ, करती है कि बाजार से लेती है?
3: न, पुराना बीज,
2: पुराना ही जो आपके घर में रखा
3: हाँ, घर पूछी कर।
2: तो उससे सही फसल हो जाता
3: हाँ,
2: है?
3: सही फसल हो जाता है,
2: उत्पादन सही होता
3: हाँ,
2: है,
3: हो जाता है, फायदा भी हो जाता है।
2: अच्छा, तो उसको कोड़न वगैरह कुछ करने का जरूरत पड़ता है?
3: हाँ, कोड़े के बाजी दो बाजी
4: दो बार कोड़ना पड़ता है।
3: दो बार जी कोड़ना पड़ता है या पटाना पड़ता है,
4: पानी पटाना मेन काम होता है, कोड़न करना पटाना है
3: बस।
4: खरपतवार निकालने के लिए खुद से निकालते
3: हैं? हाँ, निकाल लेते हैं अपने हाथ से।
4: हाथ से ही निकाल लेते हैं। आप कितने दिनों से लगा रही हैं ये अदरक?
3: हम तो लगा रहे हैं 2008 से।
4: 2008 से आप अदरक ओल और हल्दी ही लगा रहे हैं और इसका सही से उत्पादन हो जाता है?
3: हो जाता है,
4: कहीं से कोई दिक्कत नहीं?
3: कोई दिक्कत ना।
4: और फिर अगर मान लीजिए कि जो बीच में कोई बीमारी उमारी या किसी तरीका का कोई डर दिखता है?
3: ना ना, बीमारी मारी कुछ ना,
4: इसमें कुछ नहीं होता?
3: ना ना, हम नहीं दवाई ना डालते हैं, वो आती राख डाल देते हैं, राख ऊपर से,
4: ऊपर से राख डाल देते हैं।
3: हाँ, छिट देते हैं राख,
4: तो उससे क्या हो जाता है फायदा?
3: कीड़ा उड़ा मर जाता है उसका।
4: अच्छा, गोबर खाद और राख डाल देती है तो उससे कीड़ा मर जाता है?
3: हाँ।
4: और गाछ को किसी तरीके का नुकसान नहीं
3: ना,
4: होता?
3: ना, ना, नुकसान नहीं,
4: नहीं होता है और अच्छे से हो जाता है?
3: अच्छे से।
4: कितने दिनों में तैयार होता है ये?
3: कार्तिक में हो जाता है।
4: अच्छा,
3: कार्तिक में मनो आदि कोड़ देते हैं।
4: अच्छा,
3: ओल भी कार्तिक में कोड़ के खा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, इसके बीच में आपको इतना इसको तैयारी और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती?
3: ना, कुछ ना,
4: और ये तैयार हो जाता है।
3: हाँ, तैयार।
4: और इसके साथ मान लीजिए कि जैसे कह लीजिए कि जब लगाई है तो उसका उत्पादन सही से होता है?
3: हाँ, सही से होता है।
4: तो घर में खाने भर रहता है कि बाजार बेच?
3: ना, बाजार बेचे जाते हैं।
4: बाजार में बेच आती है?
3: हाँ,
4: खुद से बेच आती है?
3: कुछ से बेचते हैं,
4: खुद से अकेले बेच?
3: हाँ, अकेले बेच लेते।
4: और इसमें दे जैसे फसल जो लगा रही हैं वो अकेले देखभाल करती हैं या किसी की जरूरत पड़ती
3: ना?
4: है
3: ना, अकेले सब करते हैं,
4: अकेले कर लेते
3: हैं।
4: हाँ,
3: अकेले कर
4: लेते। और इसके साथ कुछ और सब्जी भी लगाते हैं?
3: हाँ, लगाते हैं भिंडी।
4: भिंडी लगाते हैं?
3: हाँ।
4: अभी लगाई है भिंडी?
3: हाँ।
4: अच्छा, भिंडी लगाने के लिए क्या करना होता है?
3: सब है जो कोड़ के या फिर कोड़ के रोपने पड़ता है।
4: अच्छा, जमीन
3: खींच के जमीन बना के?
4: अच्छा, जमीन का जुताई कितने बार करते हैं?
3: दो बार।
4: दो बार में हो जाता?
3: हाँ,
4: है
3: दो बार
4: में आपका जमीन अच्छे से तैयार
3: तैयार हो जाता है।
4: अच्छा, तो फिर उसके बाद जब भिंडी का जो बीज है वो दुकान से खरीदते हैं?
3: ना, दुकान से खरीदते हैं।
4: दुकान से खरीदते? हाँ। हैं, और उसमें कुछ उपचारित करते हैं?
3: नहीं, कोई गोबर दे देते हैं कम उठा
4: एक आदमी उठा। हाँ। मतलब ज्यादातर आप गोबर खाद का?
3: हाँ,
4: उपयोग करती हैं?
3: गोबर
4: के। रासायनिक खाद का उपयोग कम करती हैं?
3: हाँ,
4: और जो भी सब्जी लगाती हैं उसका सही से
3: अच्छा लगता है?
4: अच्छा होता है?
3: अच्छा हो। हाँ।
4: और ये जैसे अदरक हल्दी भी लगाई जिस तरीका से आपने बताया कि गोबर खाद का उपयोग करता है और बीमारी से बचने के लिए या फिर आपको सुरक्षित रखने के लिए राख फेंक देती है तो जिससे कीड़ा वगैरह मर जाता है? कीड़ा नहीं लगता है। तो आपको जैसे कि जो फसल लगाती है तो उससे आपको लगता है कि लाभ हो रहा है?
3: हाँ, लाभ हो रहा है,
4: फायदा हो रहा है।
3: हाँ।
4: आप खेती बाड़ी से जुड़े रहना चाहती हैं?
3: हाँ, जुड़े रहना चाहती हूं।
4: अच्छा, तो जैसे अगर भिंडी जो लगाती हैं, आपने बोला कि जमीन तैयार करके करती हैं, फिर बीज लगाती हैं।
3: हाँ।
4: उसके बाद उसमें गोबर खाद अगर जमीन में कितनी बार आप छिटती होंगी?
3: बस एक बार।
4: एक बार में हो जाता है?
3: हाँ।
4: कितने दिनों पहले
3: रोप देते हैं, फिर पास देने के बाद थोड़ा थोड़ा गोबर दे देते हैं, दो बार गोबर देते हैं।
4: अच्छा,
3: अब दे के पानी पटावे लगते हैं पास देके।
4: अच्छा, तो उसके बाद हो जाता है?
3: हाँ, हो जाता है।
4: जैसे फसल बीज लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद फसल होता है तो उसमें कुछ देखभाल करने की जरूरत होती है? कुड़ाई वगैरह?
3: ना ना,
4: कुछ भी
3: नहीं। कुछ भी ना, घास उस निकाल देते हैं।
4: घास निकालने के लिए? हाँ। तो उसमें और कुछ अपने से निकालने का जरूरत पड़ता
3: है? हाँ, अपने से।
4: हाँ, क्योंकि हाथ से ही निकालने?
3: हाँ, से। हाँ।
4: तो जैसे भिंडी जो लगाती है?
3: हाँ।
4: सोनी जी।
3: हाँ।
4: तो उसमें आपका सही से उसमें उत्पादन होता?
3: हाँ,
4: है?
3: हो जाता है।
4: अच्छा, भिंडी?
3: हाँ, अच्छा हो जाता है। तो
4: किसी तरीके का उसमें बीमारी का?
3: बीमारी भी ना,
4: कोई बीमारी?
3: कोई बीमारी ना,
4: कोई बीमारी का डर नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से हो जाता है?
3: हाँ, बहुत अच्छा से।
4: तो आपको सब्जी वगैरह लगाने में ठीक लगता?
3: हाँ,
4: है?
3: हाँ, ठीक लगता है।
4: अच्छा, आप रेडियो सुनती हैं?
3: हाँ, रेडियो सुनते हैं।
4: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम वगैरह सुनती हैं?
3: किसान भाई के सुनते हैं, सब्जी उब्जी कुछ के लगा के।
4: अच्छा,
3: वो सब देते हैं तो सुनते हैं, अच्छा लगता है।
4: अच्छा लगता है।
3: हाँ।
4: तो वो कार्यक्रम सुनती है, उससे आपको लाभ मिला है?
3: लाभ मिलता है।
4: लाभ मिलता है ना?
3: हाँ, अच्छा, मिलता है,
4: बहुत ही अच्छा। अच्छा सोनी जी, आप जैसे खेती बाड़ी तो कर रही हैं, जैसे आपने बताया कि ओल हल्दी ये सब लगाती हैं।
3: हाँ।
4: भिंडी लगाई हैं।
3: हाँ।
4: और जैसे जो भिंडी आप लगाती हैं अगर सही उत्पादन हो जाता है तो आप बेचने के लिए कहाँ बेचती हैं?
3: बाजार में जाके हजारीबाग?
4: हजारीबाग में जाके बेचती हैं? खुद से बेचती हैं?
3: खुद से बेचते हैं।
4: खुद से ही बेचती हैं? और उसका कितने दिनों में भिंडी का फसल लगभग आपका तैयार हो जाता है?
3: हो जाता है मानो दो महीना में,
4: दो ढाई महीने में हो जाता
3: है? हाँ,
4: दो महीना में हो जाता है?
3: हो जाता है। हाँ।
4: और उसके बाद आप उसको बाजार?
3: हाँ, बाजार में बेचते हैं।

0: सेवा करते हैं तो जल्दी तैयार होता है,
1: जल्दी तैयार होता
0: है, जल्दी तैयार।
1: अच्छा ठीक है, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दिया, समय दिया हमारे कार्यक्रम के लिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: तो देखा हल्का बहन की जब किसान जो हल्थिन महिला किसान वो सोनी देवी हल्थिन जे बताओ थे कि ओल हल्दी और अदरक के खेती के साथ साथ भिंडी की खेती कैसे करे चाहिए, और ये हम इन से बातचीत करोल थे अलका कुमारी हल्थिन, तो हम आप आगे जानकारी की तरफ बढ़ो ये, जैसे किसान भाई बहन खेती बाड़ी बहुत मेहनत से करो थी और खास तौर पर कह सको कि थोड़ा जल्दीबाजी में या तो फिर ज्यादा पैदावार के चक्कर में वो रासायनिक खाद के भी प्रयोग कर दिए थी, साथ ही साथ जैसे रासायनिक खाद के साथ जब उनखर पौधा में कुछ किसी तरह की बीमारी अगर प्रवेश आ जाए तो रासायनिक दवा के प्रयोग करो थी, तो किसान भाई बहन के ध्यान देवे पड़ते एक में कि किसी भी तरह से अगर किसान भाई बहन अपन मिट्टी के स्वास्थ्य रखल चाहो थी, अपन मिट्टी के सेहत बढ़िया बना रखल चाहो थी ओकर में, तो ओकर में कहा है कि जैविक खाद के उपयोग करे के चाहिए, और जैविक खाद के प्रयोग करे से ज्यादा बेहतर उनका पास कहा होता है कि एकर में जो है से मिट्टी के जो उर्वरा शक्ति है वो है, वो उर्वरा क्षमता जो बनल रहता है और पौधा भी उनका पास बहुत स्वच्छ रहता है, बहुत हृष्ट पुष्ट रहता है, ताकि किसी भी तरह से उनका मिट्टी के साथ साथ जो है से पौधा के भी ओकर में बहुत लाभ पहुंचे थे जैविक खाद।
3: बिल्कुल, देख लेने की अगर जैविक खाद के ज्यादा प्रयोग करल से माटी के तो उर्वरा शक्ति बढ़वे करो है यशमिंदर भाई, और जे जल धारण माटी में जे जल धारण करे के क्षमता हो जाए, ताकत रहे से बढ़े है, आ जे हमने पौधा लगावे ओकर जे पोषक तत्व तो जरूरी रहे से सब मिलो है, और ज्यादातर अगर हम जैविक खाद के उपयोग करिए तो ओकर से हो जाए, धीरे धीरे उपयोग करते ओकर मात्रा बढ़ेते, रासायनिक उर्वरता में जो हमने के निर्भरता हो गई खेती में करे की जरूरी हो जाए वो कम हो जाता है, जैसे हमने के पर्यावरण एकदम सुरक्षित रहता है।
2: जैविक खाद प्रयोग करे के भी एक बहुत अच्छा तरीका है, किसान भाई कर सको थे निकर में कहा है कि गोबर और जो बर्मी कंपोस्ट हो है जैसे केचुआ खाद जैसा में बता रही है, एक खातिर कहा है कि खेत के बढ़िया से जुताई करके समय में जो है से मिट्टी में जो एक समान रूप से मिला देवे के चाहिए,
3: बिल्कुल,
2: ताकि जो है कि मिट्टी और गोबर खाद जो है से एक दूसरे से मिल जाए, और ओकर में कहा है कि मिलने के बाद जो है से किसान भाई बहन एक जो है से बढ़िया से छिड़काव खेत बाड़ी में कर सको थी, जब खेत बाड़ी में छिड़काव कर रहीन तो कहा है कि वो जो मिट्टी है जो गोबर मिल चुका है वो कहा है कि जो पौधा जो किसान भाई बहन तैयार करो थी अपन जमीन में जो बोया करो थी तो ओकर जड़ तक जा है, और जब जड़ तक जा है तो बहुत फायदा भी हुआ है। दूसरा बात कहा है कि किसान भाई बहन हरा खाद के बारे में अगर हम बता दिए कि खेत में सनय हो है जिससे सनय हो गए या ढांचा हो गए तो ओकर में कहा है कि फसल उगाए खातिर उनका जो है से जब फूल आवे लगो है, फूल आवे के समय में कहा है कि मिट्टी में ओकरा जोत देवे के चाहिए, ताकि जो है एक तरह के वो हरा खाद के काम करते हैं, और ओकर में बढ़िया तरह से जो है से जिस तरह से हमें केचुआ खाद या कंपोस्ट खाद के हमें प्रयोग करोइए ठीक उसी तरह से वो भी फायदा पहुंचेता है।
3: बिल्कुल, यानी कि अगर जैविक खाद जो हमने के चाहिए कि जैविक खाद के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, यानी जितना हमने के अगर फायदा देखे थी है जैसे जमीन वास्ते या फिर हमने के फसल वास्ते, तो कोशिश करना चाहिए कि हमने के जैविक खाद के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए, ताकि हमने के फसल के जो गुणवत्ता है
2: बिल्कुल
3: ओकर में बहुत ज्यादा सुधार हो, और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो, माटी जो है से लंबा समय तक
2: एक चीज एक में आर कहा है अलका बहन की, जैसे हमारे हमें हरी खाद के बारे में बात कर ली है, अब कहा है कि बात हमें कर रही है कि तरल खाद, तरल खाद मतलब कहा है मतलब है कि किसान भाई बहन के थोड़ा सा अटपटा लगो है, थोड़ा सा उनका लगता है कि तरल खाद सामान जाना थून नाम जाना थून फायदा भी उनका मिलो है, पर कहा है कि थोड़ा अटपटा लगो है, लेकिन कहा है कि सरसों के जो खली है वो है ओकर में कहा है कि और अन्य जैव खाद के मिला के किसान भाई बहन जैसे वगैरह सड़ा के जब तरल रूप में बना देते हैं एक तरह से लिक्विड कहा जा सको हो कि और खली हो गया या सरसों के खली मिला के या ओकर में और कोई खाद दे के किसान भाई बहन जब ओकरा मिला रहते हैं, मिलावे के बाद क्या है कि जब पौधा में जब दबो थे तो उनका लगते का कि पौधा में दबे के बाद उनका एक अलग ताजगी महसूस हो है और बेहतर तरीके से किसान भाई उपयोग कर सको थे।
3: बिल्कुल, और अब हमने थोड़ा सा बाजार भाव की तरफ मुड़ो है, तब ये बाजार भाव बता दियो किसान भाई बहन के कि आज के जो बाजार भाव है, लाल आलू मिले लगल हो 15 से 20 रुपया किलो, सफेद आलू के भाव है 10 से 15 रुपया किलो, प्याज मिले थो 15 से 20 रुपया किलो, फूल गोभी 40 से 50 रुपया किलो, पत्ता गोभी 30 से 40 रुपया किलो, और पटल के भाव है 30 से 40 रुपए किलो।
2: अब देखा जैसे अब हमें भिंडी की बता रही है कि भिंडी के जो भाव है 20 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रति किलो है। जो परोर है, परोर जो है 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो है।

0: कद्दू जो है से 15 रुपए से लेकर 20 रुपया प्रति किलो है, और हरा मिर्च के जो भाव है अभी थोड़ा सा बढ़ल है अलका बहन, कि 60 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो है। शिमला मिर्च 40 रुपया से 50 रुपये प्रति किलो है, और गाजर जो है से 30 रुपया से लेकर 40 रुपया प्रति किलो है। बीट जो है से 30 रुपया लेकर 40 रुपये प्रति किलो है।
1: अब बीन्स के दाम हो कि 30 से 40 रुपए किलो मिले लगल है, मूली 20 से 30 रुपए किलो, धनिया पत्ती हो 80 से 100 रुपए किलो, अदरक 80 से 100 रुपए किलो, खीरा 30 से 40 रुपए किलो, टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो, और लाल साग और पालक साग दोनों 20 से 30 रुपए किलो है।
0: तो देखा कि आज की जो अधिकतम तापमान है वो 36 डिग्री सेल्सियस है, और न्यूनतम तापमान जो है 28 डिग्री सेल्सियस है। आर्द्रता है जो नमी है वो जो है से 30% है, और जो कल के जो पूर्वानुमान है कल के जो तापमान रहता है से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है, और अनुमान है कि न्यूनतम जो है 27 डिग्री सेल्सियस रहता है।
1: बिल्कुल। और अब हमने सुना ये एगो लोकगीत।
0: हाँ,

0: आर एक यही गीत के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से विदा लेवे के भी समय हो गेले है। तो हमरा अलका
1: और हमरा यशमंत के
0: अनुमति देता
1: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ।
0: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ।
0: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:03 हुए हैं। पेश है श्रमिक भाइयों को संबोधित कार्यक्रम मेहनत कश।

कार्यक्रम मेहनत कश में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, साथ ही अंजलि का नमस्कार जोहार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कामों को मन लगाकर पूरा कर रहे होंगे। खुशी मन से कोई भी काम किया जाए तो वह जल्दी ही अच्छे से पूरा हो जाता है। श्रमिक भाइयों, कार्यक्रम में आगे ढेर सारी बातें होंगी, जानकारी भी सुनवाएंगे। अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत और उससे पहले जरूरी संदेश।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
4: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
3: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
5: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आप

0: किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों, गीत और जरूरी संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए ये 3 आधारशिला का होना बहुत ही जरूरी है। पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये तीनों जहां एक साथ रहेंगे वहीं लोग अच्छी तरह से मेहनत करके काम पूरा कर सकते हैं। खासकर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक भाइयों को थकान मिटाने और बीमारियों से बचने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। संतुलित आहार में प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम का होना चाहिए। इसके साथ ही पीने के लिए शुद्ध पानी और स्वच्छ वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक मेहनत करने वाले श्रमिकों के शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए भोजन में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल और वसा का उचित मिश्रण होना चाहिए। महिला श्रमिकों के आहार में कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन की मात्रा विशेष रूप से होनी चाहिए। अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो श्रमिक जल्दी थक जाते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। श्रमिकों की शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए सरकार भी कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। श्रमिक भाई पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे तभी वो अच्छे से काम कर सकेंगे। इसके लिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच होना जरूरी है ताकि किसी को किसी तरह की बीमारी हो तो पता चल सके। खतरनाक कारखानों या निर्माण स्थलों पर काम करते समय हेलमेट, मास्क और दस्ताने जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। कार्यस्थल की स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान देना जरूरी है। वहां शौचालय का होना अनिवार्य है तथा हाथ धोने के लिए साबुन या हैंड वॉश तथा पानी का होना जरूरी है। पीने का पानी तथा भोजन भी स्वच्छ होना चाहिए ताकि किसी तरह से किसी की कोई बीमारी ना हो। सही ढंग से काम करने के लिए पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता अति आवश्यक है। इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी कार्यक्रम में एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं। ट्रंक, ड्राम और अलमारी निर्माण व्यवसाय का बढ़िया जरिया। भेंट वार्ताकार हैं कपिल देव विश्वकर्मा और इनसे बातचीत कर रहे हैं सूरज रजक। तो सुनते हैं ये जानकारी।
2: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करा रहे हैं जिन्होंने शुरुआत तो छोटी की लेकिन पहचान बड़ी बनाई है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है कपिल देव विश्वकर्मा जी। ट्रंक है, ड्रम है और अलमीरा का व्यवसाय करते हैं। पारंपरिक व्यवसाय है, परिवार का व्यवसाय है, लेकिन उन्होंने इसे एक बड़ी पहचान बनाई है। आइए आज जानते हैं इस व्यवसाय के बारे में, इनके जीवन की सफलताएं, संघर्ष के बारे में कि आज वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। तो कपिल देव जी, आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: तो सबसे पहले ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि इसकी शुरुआत अब कब से किए हैं?
3: ये तो शुरुआत हम लोग बहुत छोटा से ही कर रहे हैं। हमारे बाबू जी जो है बहुत छोटे में गुजर गए थे तो हम लोगों को तकलीफ हो गया, तो उस समय से हम लोग ये व्यवसाय में लगे हुए।
2: कितना वर्ष हुआ होगा जब आप इस काम में शामिल हुए?
3: तो हम तो मतलब 10 वर्ष से इसमें लगे हुए, 10 वर्ष का उम्र से।
2: ओ, 10 वर्ष की उम्र से
3: जी।
2: तो कम से कम हमको लगता है कि 30-35 साल का वो
3: हाँ सर।
2: तो उस समय जो आपका ये वर्कशॉप था और आज है, उसमें क्या अंतर आता?
3: नहीं, पहले तो ऐसा वर्कशॉप नहीं था, अब जो है सो ये तो मतलब हमारे बाबूजी का जमीन था, दादा का, तो उसी पर हम लोग को बनाए हैं घर और इसी में दुकान किए हैं।
2: तो अभी क्या क्या बनाते हैं आप लोग?
3: अभी तो हम गोदरेज, अलमीरा, ट्रंक और ड्राम वगैरह बनाते हैं।
2: बक्सा वगैरह भी?
3: हाँ, बक्सा वगैरह, ट्रंक वगैरह सब बनाते हैं जी।
2: और मतलब जैसे कि इस तरह का जब व्यवसाय है तो आपका यहाँ व्यवसाय है और हजारीबाग में और सारा व्यवसाय है, तो क्या अंतर है जैसे ग्राहक महसूस करे कि क्या विशेष देते हैं?
3: हम विशेष यही देते हैं कि हम जो है जो भी चीज बनाते हैं ठोस चीज बनाते हैं, ठीक है। वो हम लोग ग्राहक को ठगने वाला सामान नहीं बनाते हैं, जो भी चीज है बढ़िया है। ट्रंक भी जो है सो भी मजबूत हम लोग

0: कितना मोटा होता है, 22 गेज कितना मोटा होता है, तो वो आकर बोलते हैं कि नहीं हमको तो 20 गेज का दे रही है, इतना ही में दे रही है।
1: मतलब इस चीज को समझ
0: नहीं होता है, इसलिए
1: ठगा
0: भी जाते हैं बाजार में।
1: अच्छा, जैसे इसके लिए किस तरह के रॉ मटेरियल आप लोग इस्तेमाल करते हैं?
0: हम लोग सब टाटा सीट इस्तेमाल करते हैं।
1: तो कहाँ से उपलब्ध होता है आपको?
0: हम लोग तो मतलब यहीं से लोकल ही उठा लेते हैं,
1: लोकल परचेज करते हैं
0: जी।
1: और जैसे कि एक अलमीरा है, तो इस तरह का अभी जैसे डिजाइन वगैरह में बहुत सारा परिवर्तन आया है, तो क्या क्या बदले हैं आप लोग
0: उसमें? लॉकर के अंदर में जो चेंजिंग होता है वही से,
1: बाकी वही पारंपरिक।
0: हाँ, पारंपरिक टाइप का जो बनता है उसी तरह का है, लेकिन अंदर में अभी के समय में जैसे स्टाइल वगैरह थोड़ा चेंज हो गया है।
1: लॉकर वगैरह भी?
0: हाँ, लॉकर वगैरह में भी परिवर्तन है।
1: तो आप बता रहे हैं कि 30-35 साल आपका इस व्यवसाय में हो चुका है, तो शुरुआत में ये सारी चीजें थी कि उसमें कुछ अंतर था?
0: नहीं, उस समय इतना नहीं था।
1: तो मतलब उस समय क्या बनाते थे?
0: उस समय भी हम लोग गर्म काम करते थे, तो उसको फिर हम लोग चेंज करके फिर हम लोग ये काम करने लगे।
1: पहले गर्म काम?
0: हाँ, पहले गर्म काम करते थे।
1: तो गर्म काम करने से मतलब क्या?
0: जैसे कि मतलब सिकड़ी हो गया, पहले बाजार में वही सब चलता था, पारंपरिक जो हम लोगों का जो पैसा था वही हम लोग करते थे।
1: खुद करते थे इसको?
0: जी।
1: मतलब उसके बाद यहाँ?
0: उसके बाद फिर जो है हम लोग थोड़ा सा अपना चेंजिंग किए, तब फिर हम लोग जैसे अलमारी बक्सा ये सब बनाना शुरू किए।
1: आज देखिए आपके वर्कशॉप में भी कितने लोग काम कर रहे हैं, तो कितने लोग आज आप काम करते हैं?
0: हमारे वर्कशॉप में अभी 3 जन काम कर रहे हैं, एक बक्सा मिस्त्री है, एक अलमारी मिस्त्री है और एक पेंटर है।
1: मतलब 3 अलग अलग काम करने के लिए 3 अलग अलग
0: जी
1: लेबर है
0: जी। और हम खुद से अपना काम करते हैं,
1: आप खुद भी अपना काम करते हैं, क्योंकि आप तो शुरुआत से गर्म काम कर रहे थे उस समय से, आपका ही अनुभव है।
0: हाँ।
1: अच्छा, जैसे कोई एक व्यवसाय होता है तो उसमें परिवार के लोगों का भी सहयोग के बिना तो व्यवसाय सफल नहीं हो पाता है, आगे संभव नहीं हो पाता है, तो परिवार के लोगों को कितना आपका सहयोग मिल पाता है?
0: परिवार जैसे अभी बच्चा लोग थोड़ा बड़ा हो गया तो लोग सहयोग करते हैं। हाँ, एक लड़का हमारा एडवोकेट है, अब कोर्ट से आने के बाद जो है सो हम हमारे पास। हाँ,
1: तो मतलब परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग मिलता है।
0: जी जी।
1: और जैसे जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसकी अपनी चुनौतियां हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करते हुए आप यहाँ तक आए हैं, इस बारे में कुछ बताइए।
0: मतलब हम तो पढ़ाई भी किए और पढ़ाई करने के साथ साथ हम ये व्यवसाय में भी आए हैं।
1: तो शुरू में कितना समय देते थे, जैसे जब पिताजी थे जब काम करते थे उस समय?
0: तो हम पिताजी तो हमारे बहुत छोटे में ही गुजर गए थे, समझे ना। तो हमारी माँ थी, वो माँ भी हमको बहुत कोऑपरेट की। तो माँ भी अभी गुजर गई हैं, तो अभी बच्चा लोग है वो लोग कोऑपरेट करता है।
1: और जैसे कि बाजार की बात करते हैं, तो बाजार कहाँ कहाँ है, इसका मतलब आप बेचते कहाँ है इसको?
0: बेचते तो यहीं पर से है,
1: लेकिन आपके ग्राहक कहाँ कहाँ है?
0: ग्राहक तो मतलब बहुत जगह है, जो भी एक बार सामान ले गए तो हमारे ग्राहक बन जाते
1: हैं। हमारे शहर में ही हजारीबाग शहर से बाहर?
0: हजारीबाग से बाहर भी है।
1: जैसे
0: आपका चतरा हो गया, फिर आपका इधर बिशुनगढ़ हो गया, फिर आपका बड़का गांव हो गया, इधर से लोग आते हैं और सब ले जाते हैं।
1: अच्छा, जैसे कि आपका ये वर्कशॉप देखकर, आपका काम देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत एक स्किल की जरूरत होती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं एमबीए करके आए और इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप पारंपरिक रूप से कर रहे हैं और इतना बेहतर कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं?
0: इसके पीछे का कारण क्या मतलब वही है कि हम लोग अपना मेहनत से आगे बढ़े हैं।
1: मेहनत से आगे
0: बढ़े? हाँ।
1: जैसे कहते हैं कि किसी व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई चीजों को उसमें अपनाना है, तो आप उन चीजों को अपनाए हैं अपने व्यवसाय में?
0: हाँ, नया चीज भी अपनाए हैं बहुत सारा चीज।
1: और जैसे कि कोई इस व्यवसाय को करना चाहता है, जैसे कोई युवा है, तो उसको क्या आप सलाह देना चाहेंगे, किस तरह इस व्यवसाय में आगे बढ़ सकता है?
0: नहीं, व्यवसाय करने में ठीक है, कोई वैसा बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगता है, समझे, कम पूंजी में भी अगर अपने से अगर वो जानते हैं तो बहुत अच्छा है, समझे ना। हम तो अपना मतलब हमारे वर्कशॉप से 3-4 मतलब स्टाफ जो को हम सिखाए हैं, वो लोग अपना अपना धंधा कर रहा है, बहुत अच्छा है उन लोग।
1: मतलब आप यहाँ से सीखे? हाँ, उसके बाद वो
0: एक चतरा में जाकर दुकान किया है, एक गुमला में है, एक हजारीबाग में ही पिलावल में अपना काम कर रहा है।
1: मतलब ये भी आपके, ये उपलब्धि भी आपके?
0: हाँ हाँ।
1: और जैसे

0: व्यक्ति कोई नया लड़का है या कोई नया इस व्यवसाय में आना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है?
1: हाँ, वो आने के लिए अगर चाहता है तो हम उसको, अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको सिखलाएंगे।
0: नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं बाहर दूर दराज का, जैसे रेडियो में कोई कार्यक्रम सुन रहे हैं तो जो आपके साथ आपके पास नहीं आ सकते हैं तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: हम तो यही सलाह देंगे कि कम पूंजी में अच्छा बिजनेस है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप अपने से करते हैं तो मतलब आपका लेबर चार्ज भी आपके पास ही रह जाता है।
0: मतलब अगर खुद से काम अगर आता है तो उसमें मतलब लागत भी कम मुनाफा उसका
1: ज्यादा होगा।
0: कपिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी व्यवसाय के लिए पूंजी एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो पूंजी के लिए फिर आगे जब व्यवसाय बढ़ता है तो उसके लिए और ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, तो इसके लिए बैंक वगैरह से भी लोन वगैरह की सुविधाएं मिलती है, तो आप इस तरह का ऋण वगैरह लिए हैं तो उस बारे में कुछ बताइए।
1: नहीं, बैंक से तो लोन नहीं लिए हैं, लेकिन हम इसी से पूंजी बढ़ाकर जो है सो हम अपना काम कर रहे हैं।
0: मतलब इसी से पूंजी बढ़ा करके काम कर रहे हैं। और जैसे देखिए कि बहुत सारे आपके यहाँ जैसे ट्रंक है, ड्रम है, तो सबसे ज्यादा आपके यहाँ की बिक्री किस चीज में है?
1: सब चीज थोड़ा थोड़ा बिकता है सर,
0: मतलब मिला जुला।
1: हाँ, जैसे अलमारी भी बिक गया, ट्रंक भी बिक गया, कोई ड्राम का जरूरत हुआ तो ड्राम भी ले गए, तो इस तरह से बिक जाता है।
0: अच्छा, एक व्यवसायी का सपना होता है कि वो और आगे बढ़े, कुछ और बेहतर हो उसकी जिंदगी में, तो आपके पास भी तो कोई सोच होगी कि और इसको यहाँ तक ले जाना है?
1: हाँ, वो तो है। तो अब तो हम तो मतलब अब जो कर रहे हैं वो तो ये हो गया, अब तो हमारा लड़का लोग है, अगर वो लोग चाहे तो ले जा सकते है।
0: जैसे कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं, किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं?
1: तो इसके लिए तो मतलब अगर इसी में जुटने से तो आप मतलब बड़ा व्यवसाय भी कर सकते हैं इसमें, और जैसे कि होलसेलर वगैरह भी कर सकते हैं, किन्हीं को जैसे अलमारी है वो हम लोग दे सकते हैं, उन लोग भी अपना बेचकर मुनाफा कमाते हैं लोग।
0: मतलब कि होलसेल के काम में इससे आगे बढ़ा जा सकता
1: जी,
0: है।
1: जी।
0: तो जैसे देखिए बाहर में जैसे महानगरों की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों की चीजें या कहे कि ब्रांडेड हो गैर ब्रांडेड हो तो बड़ी इस तरह की चीजें हजारीबाग के बाजार में भी है।
1: हाँ,
0: तो,
1: भी है।
0: हाँ, तो बाहर से जो चीजें आती है तो क्या यहाँ से ये सारी चीजें संभव नहीं है?
1: नहीं, यहाँ से भी संभव है, समझे ना। लेकिन है क्या कि आदमी उतना करने लायक और उसमें जो है सो बड़ा पूंजी का जरूरत पड़ता है, जैसे उसमें बड़ा बड़ा मशीन का भी जरूरत पड़ता है, तो हम लोग उतना बड़ा मशीन नहीं लगा सकते, इसी के चलते हम लोग हाथ से ही ये सब काम कर लेते हैं।
0: बड़े मशीन की बात करें तो किस तरह के मशीन का उपयोग होता है?
1: वो बैंड मशीन हो गया उसमें, फिर आपका स्पॉट वेल्डिंग हो गया, ये सब का जरूरत पड़ता है, रंग करने का बड़ा मशीन होता है, वो सब जरूरत पड़ता है।
0: मतलब बड़े पैमाने पर करने के लिए
1: मशीनें हैं जी।
0: तो वो सारी चीजें बाजार में है, उसको लाकर किया
1: बाजार में है, लेकिन
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, ट्रंक ड्रम और अलमारी निर्माण व्यवसाय का बढ़िया जरिया। जानकारी दे रहे थे कपिल देव विश्वकर्मा और इनसे बातचीत कर रहे थे सूरज रजक। अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
8: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
7: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
8: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
7: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: इसी के साथ कार्यक्रम मेहनत का श्री अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रमिक भाइयों को संबोधित कार्यक्रम मेहनत कश। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम कहानी से यह गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत फिल्म चांदनी से।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छुपा रुस्तम से, अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: पीआरओ को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल रांची समेत राज्यभर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी। हजारीबाग, गोड्डा समेत कई शहरों में निकाली जाएगी जागरूकता रैली। और एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारत ने चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कप्तान सलीमा टेटे बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देशभर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य में आज से पीएम फसल बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान देवेश तिवारी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
2: छात्रों के लिए एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल का शुरुआत किया गया, जो झारखंड की पहचान है। जो उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया गया। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया गया। और जो विकास के कार्य है 3 से आकांक्षी जिलों में चल रहे हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देशभर में मॉक ड्रिल किया। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इधर नीट परीक्षा को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारी की गई है। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। इस बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट जारी किया है। नीट परीक्षा को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीपीओ रूपक कुमार ने बताया कि जांच अभियान चलाकर विभिन्न होटलों में ठहरे हुए व्यक्तियों का सत्यापन और जांच की गई।
3: नीट परीक्षा जो कि दिनांक 21/6/2026 को प्रस्तावित है, उसके मद्देनजर हम लोग विभिन्न होटलों में चेकिंग कार्यक्रम चला रहे हैं, संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रहे परीक्षा में। तो संदिग्ध लोगों पर नजर रख रहे हैं जो परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और एईआरओ को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के कार्यों का सत्यापन कर उन्हें मूर्त रूप देने में ईआरओ एवं एईआरओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के दौरान एसआईआर के विभिन्न चरणों, इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन पर विस्तार से जानकारी दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के लोकभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल

0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में रह रहे पश्चिम बंगाल वासियों को संबोधित करते हुए विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और भावनात्मक एकता को मजबूत कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कल यानी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत मंडप में सुबह 6 बजे से योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे और योग के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इधर साहिबगंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम फूलो झानो इंडोर स्टेडियम में कल आयोजित होगा। साहिबगंज के जिला आयुष पदाधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने लोगों से निरोग रहने के लिए योग अपनाने की अपील की।
2: जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बढ़ती उम्र में हम इस योग का प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। योग का मतलब जोड़ना, कैसे हम जुड़े, कैसे हम अच्छाई की तरफ बढ़े। सब योग केवल रोग को नहीं ठीक करता, वो मन को भी ठीक करता।
0: उधर हजारीबाग जिला आयुष समिति और आयुष विभाग द्वारा लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई और कल होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई। वहीं गोड्डा में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर सरायकेला खरसावां जिले में योग दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 33 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां 75 प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा लोगों को योगाभ्यास कराया जाएगा। राजधानी रांची स्थित संत पॉल कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची के CTSP पारस राणा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले गए मैच में भारत ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। भारतीय टीम की कप्तान और झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीम में झारखंड की निकी प्रधान और दीपिका सोरेंग भी शामिल है। फाइनल में अब भारत का सामना मेजबान न्यूजीलैंड से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की वितरित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ और एईआरओ को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल रांची समेत राज्यभर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी। हजारीबाग गोड्डा समेत कई जिलों में निकाली गई जागरूकता रैली। और FIH महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारत ने चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कप्तान सलीमा टेटे बनी प्लेयर ऑफ द मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हेरोइन कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य

0: सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: विश्व प्रसिद्ध सरायकेला शैली छऊ नृत्य को एक नया आयाम मिलने वाला है। इग्नू के माध्यम से कलाकारों के लिए 6 माह तथा 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ होने वाला है। इसकी जानकारी पद्मश्री शशधर आचार्य ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से यह कोर्स प्रारंभ होगा। पद्मश्री शशधर आचार्य ने कहा कि
2: मई महीना में इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी है कि 15 जुलाई को ये कोर्स स्टार्ट होगा। एक कोर्स है 6 महीने का डिप्लोमा, दूसरा कोर्स है 1 साल का डिप्लोमा। अगर ये डिप्लोमा को लोग करते हैं तो उनको जो अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली समय में मिलेगा, क्योंकि एनईपी के तहत ऐसा है कि जिस एरिया में जो डांस फॉर्म है, जो संगीत है, जो थिएटर है, फोक थिएटर है, उसी का ही टीचर को रखा जाएगा।
1: जिले में रफ बाइकिंग एवं मॉडिफाइड बाइकों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने अभिभावकों से जागरूक होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें तथा कम उम्र के बच्चों और किशोरों को बाइक चलाने के लिए ना दें। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि
3: उसमें उनके पेरेंट्स की ज्यादा गलती है। बच्चा अपने से तो गाड़ी पाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। पेरेंट्स की कहीं ना कहीं अनदेखी है या मूक सहमति है। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स समझाएं, वो तो अबोध बालक बालिका है, ताकि उनके लापरवाही से ना दूसरे की जान खतरे में आए, ना उनकी खुद की स्वयं की जान खतरे।
1: कोटप्पा एक्ट के तहत जिले में निकोटिन युक्त पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है तथा उन्हें भविष्य में ऐसे प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि
4: किला मुख्यालय के जो बाजार है उनके विभिन्न दुकानों में कोटप्पा एक्ट के अनुपालन और कोटिन युक्त पान मसाला की मार्केट में उपलब्धता क्या है और क्या उसको लेकर हम लोग सघन जांच अभियान चला रहे हैं। निकोटिन युक्त गुटखा पान मसाला भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कहीं कुछ प्रोडक्ट से संदेह प्राप्त होता है हम लोगों को, तो हम लोग उसकी सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज रहे हैं।
1: स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा जिला फुटबॉल लीग का आयोजन 24 जून से 1 जुलाई तक कराने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष प्रतियोगिता में महिला वर्ग की 6 टीम तथा पुरुष वर्ग की 25 टीमों को शामिल किया जा रहा है। आयोजन की तैयारी अंतिम चरण पर है और खिलाड़ियों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। इस संबंध में DSA के सचिव मोहम्मद दिलदार ने कहा कि
5: सरायकेला खरसावां जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है और इस बार 25 पुरुष टीमों और 6 महिला टीमों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस बार हमने 2 वेन्यू चुना है। बिरसा स्टेडियम सरायकेला में महिला फुटबॉल और पुरुष फुटबॉल के मैच खेले जाएंगे, 2 ग्रुप के मैच खेले जाएंगे, जहां 10 पुरुष फुटबॉल टीम और 5 महिला टीमें वहां भाग लेंगी और बाकी 15 टीमों का मुकाबला अर्जुना स्टेडियम खरसावां में होगा।
1: डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन वर्ष 2006 से लगातार जिला फुटबॉल लीग का आयोजन करता आ रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इस वर्ष भी जिला फुटबॉल लीग के जरिए ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तराशने तथा उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला।
0: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

कार्यक्रम झनकार में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और अभिजीत की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म थ्री इडियट से, सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की आवाज में।

केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

0: लगता है गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है।
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये।
2: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तूफान और दिया से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:45 हुए हैं। अब सुनिए करियर सलाह पर आधारित कार्यक्रम नवचेतना। संकलन एवं वाचन है श्वेता रानी का, प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: कार्यक्रम नव चेतना के इस नए अंक में आप सभी युवा श्रोताओं का स्वागत है। कीजिए स्वीकार श्वेता का नमस्कार जोहार। दोस्तों, हमेशा कुछ सीखते रहना एक निरंतर चलने वाली ज्ञानवर्धक यात्रा है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। साथियों, कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। और सफलता कभी गरीबी अमीरी में फर्क नहीं करती, वो सिर्फ आपकी मेहनत देखती है। इसलिए आपका जीवन स्तर चाहे जैसा भी हो, उसे कड़ी मेहनत से बदलने का पूरा पूरा जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब खोज होते रहते हैं, जो हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। ऐसे ही दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक अजीब चीज की खोज की है, जिसने पूरी दुनिया में विकास की एक नई क्रांति ला दी है, जिसने दुनिया में एक अपना अलग युग स्थापित किया है। आज पूरी दुनिया उसी पर आधारित और प्रभावित है, जिसे हम सभी AI कहते हैं। तो AI से संबंधित विस्तृत जानकारियों के लिए कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के USET डिपार्टमेंट की AI कोऑर्डिनेटर गीता सिन्हा जी से ली गई बातचीत को। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं मैम कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है।
1: ये एक नई बिल्कुल टेक्नोलॉजी है, जो आज भी हमारे बहुत सारे लोग इस विषय में आज उनके जानकारी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक है। AI कोई फॉर्मूला नहीं है, AI कोई थ्योरी नहीं है, AI कोई एक मेथड नहीं है, ये टेक्निक है। ये टेक्निक जहाँ पे भी जिस इक्विपमेंट में भी ऑटोमेशन आ गया, ऑटोमेटिक डिसीजन अगर लेने लगा, उस इक्विपमेंट को कह देते हैं कि AI बेस्ड है। लेकिन AI कोई मेथड नहीं कि वो डाल दिया और उसमें वो कोई चिप नहीं है, कोई डिवाइस नहीं कि डाल दिया और वो चल गया, वो ऑटोमेटिक डिसीजन लेने लगा। ये एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू जब भी कोई सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या कोई मशीन अगर ह्यूमन बींग के जैसा डिसीजन लेने लगे, तब कहते हैं कि ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत पहले एक सब्जेक्ट केवल हुआ करता था। जब AI के साथ मशीन लर्निंग मिल जाए, AI के अंदर मशीन लर्निंग है, उसके अंदर डीप लर्निंग है, उसके अंदर जनरेटिव है, तो अगर ये सारी चीजें मिल जाएं, तो AI तो सिर्फ ऑटोमेशन लाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक जब ये प्रेडिक्शन करने लगे, तब वहां पे ये कम्प्लीटली AI मशीन लर्निंग हो जाती है। और ये कोर्स हमारा बैचलर इन AI एंड ML उसी आधार पे शुरू किया गया कि मार्केट में आने वाले समय में किस चीज की डिमांड होगी, और वो आने वाले समय में इन बच्चों का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है ऐसी, और या कोई जॉब यूं कहें कि हम लोग डेली लाइफ में भी हर ऑफिस में बिना AI का इस्तेमाल किए काम कर सकते हैं। तो इसलिए हर हाल में हर बच्चे को सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा, ताकि वो इस न्यू एरा में वो काम करने के लायक हो सके।
0: तो इस कोर्स की अवधि क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आवश्यक रूप से सिखाई जाती है बच्चों को?
1: इसमें हम लोग पहले तो AI से शुरू करते हैं, और इसका बेस है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हर चीज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे ही है, और डिसीजन मेकिंग बहुत सारा चीज उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि केवल मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनका 10th तक भी मैथमेटिक्स जैसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, 10th तक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, और बाकी के फील्ड है कि किस फील्ड में ये यूज कर सकते हैं। तो अभी के समय में कोई एक ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कि AI इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए चाहे वो बायो के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हो या फिर साइंस के बच्चे हो, ये एक कोर्स कर सकते हैं। और 3 साल का ये कोर्स है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं और कोडिंग से स्टार्ट करते हैं, बेसिक सी लैंग्वेज के कोडिंग से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं पढ़ के भूल चुके हैं या उनको नहीं आता है, तो हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। और पहली लेक्चर में हम लोग बताते हैं कि ये सिंपल कंप्यूटर सिस्टम से ये AI तक कैसे आया। कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर का स्टार्ट ही कोडिंग से है, बेसिक लर्नर लैंग्वेज जो है सी लैंग्वेज, वहां से स्टार्ट करते हैं। फिर डिवाइसेस के विषय में बताते हैं, जिसमें कि हार्डवेयर भी है, तो हार्डवेयर भी बताते हैं इसको। और फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम लोग इनको पाइथन, जो कि AI मशीन लर्निंग का लैंग्वेज, उसको हम लोग वहां पे इंट्रोड्यूस करके इनको बताना शुरू कर देते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर से मशीन लर्निंग हम लोग बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग जब तक वो प्रेडिक्शन नहीं करेगा, डिसीजन नहीं लेगा, लर्न नहीं कराएंगे, तब तक उनका प्रोग्रामिंग आगे नहीं बढ़ेगा, वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो हम लोग मशीन लर्निंग से वहाँ शुरू कराते हैं, फिर हम लोग डीप लर्निंग तक जाते हैं, देन जेनरेटिव एआई तक। अभी तक कोर्स यही बना हुआ है जिसमें हमारा पेपर है, जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन हम लोग बताते हैं, डेटा एनालिटिक्स बताते हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस के बिना तो मुश्किल है प्रेडिक्शन करना, तो डेटा एनालिटिक्स भी बताते हैं हम लोग, क्लाउड कंप्यूटिंग भी बताते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स मॉडल्स वो भी हम लोग बताते हैं, वैल्यू एंड एथिक्स भी साथ में हम लोग बताते हैं, प्लस उसके साथ लैंग्वेज भी उनका रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गाँव के बच्चे आते हैं तो उनका थोड़ा कम्युनिकेशन बहुत कमजोर रहता है, तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही कम्युनिकेशन देते हैं, स्किल है इस। और इसके अलावा जितने भी पेपर है, डीप लर्निंग का पेपर है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पेपर है, मैटलैब है, ये सारी चीजें।
0: तो एआई कोर्स में एडमिशन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए बच्चों की? मैम
1: इसमें न्यूनतम योग्यता तो प्लस टू ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और कॉमर्स के बच्चे तो बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ते ही पढ़ते हैं और उसका बहुत यूज है, प्लस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा अभी जो आने वाला समय है उसमें बूम आने वाला है एग्रीकल्चर एरिया, और एग्रीकल्चर में बायो के बच्चे जाते हैं।
0: करियर के क्षेत्र में अगर हम एआई की भूमिका की बातें करें मैम, तो कितना व्यापक दिखता है?
1: अगर हम लोग आज देखें मैम, आज का समय तो करियर इसी में है, बच्चों का करियर इसमें नहीं बनाएगा तो उसका करियर है ही नहीं। यूं कहें कि हम लोग सब डेड मैन हो जाएंगे, क्योंकि कोई हमें काम देने वाला नहीं है इसके बगैर। तो अगर हम लोग ये उतनी तेजी से सीखें तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे, वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये इसका फ्यूचर एस्पेक्ट है कि एआई नहीं तो कुछ भी। तुम ज्यादा से ज्यादा ये बच्चे जल्द से जल्द सीखें, जो हमारे यूथ है उनको तो हर जगह ये पढ़ाना, स्कूल से ही ट्रेन करना चाहिए, ताकि वो बहुत जल्दी सिस्टम को एक्वायर करें।
0: एआई का जो कोर्स हो रहा है उसमें क्या फी है?
1: यहाँ पे जो फी रखा गया है 30,000 पर सेमेस्टर, ये 6 सेमेस्टर के कोर्स है, तो 6 सेमेस्टर में 30,000 पर सेमेस्टर देना, मतलब एक साल में 60,000 इनको देना। हमारे यहाँ एक नियम है कि झारखंड के ही बच्चे लेंगे एडमिशन, उन बच्चों को स्कॉलरशिप का प्रोविजन हम लोगों ने करा।
0: तो एआई में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी देना जरूरी होता है मैम?
1: हम लोगों ने पहले जो लिया फर्स्ट, जब हम लोग 2022 में इसको लॉन्च किए थे, तो 22 से 25 अभी एक ही बैच हमारा निकला है, जिसमें एक बैच में हमारा 4-5 बच्चे तो पढ़ते पढ़ते प्लेस हो गए, 6 सेमेस्टर में ही उनका प्लेसमेंट हो गया, एक तो टीसीएस में, एक तो रिटन टेस्ट लेकर ही लिया था। रिटन टेस्ट में हमारा मैथमेटिक्स था, मतलब 10th बेस्ट का था, और थोड़ा बहुत प्लस टू का क्वेश्चन तो था, थोड़ा मैथमेटिक्स था, रीजनिंग था, और कंप्यूटर का हमने टेस्ट लिया था, और थोड़ा जीके का क्वेश्चंस था। आज भी ये जो टेस्ट लेते हैं हम लोग, ये 4 सिलेबस हमारा पोर्टल पे दिया हुआ रहता है, और 100 सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चंस सेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं।
0: तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप मैम, जो एआई कोर्स करने वाले हैं?
1: आज के बच्चे सबसे पहले तो वो मेहनत करना सीख, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी मेरा संदेश है कि वो बच्चे को ट्रेडिशनल कोर्स ना दे, वो बच्चे को वो कोर्स में एडमिशन दिलाए जिसकी की अभी इंडस्ट्री में डिमांड है, आने वाला समय में बूम जिसका होने वाला, और ये एआई है, फील्ड कोई भी हो लेकिन उसके साथ एआई का कोर्स करना बहुत जरूरी है।
0: तो मैम आपने एआई से संबंधित बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छी जानकारियां दी, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: एआई से संबंधित इस बेहतरीन जानकारियों के बाद कार्यक्रम के अगले खंड में करंट अफेयर्स से हम आपको करवा रहे हैं रूबरू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत की है। 11 जून 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ। 12 जून 2026 को स्वदेशी रक्षा कंपनी SMPP ने भारतीय सेना को 106 कामिकाजे ड्रोन सौंपे। 11 जून 2026 को 23वां फीफा पुरुष विश्व कप हुआ। मैच मैक्सिको सिटी में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। यह टूर्नामेंट 11 जून से 20 जुलाई 2026 तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सृष्टि किरण ने अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। 10 जून 2026 को रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा ने

गुजरात के जामनगर में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु साझेदारी की घोषणा की है। यह मेटा का भारत में पहला एआई डेटा सेंटर होगा जिसकी क्षमता 168 मेगावाट होगी और इसे अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो करंट अफेयर्स से जुड़ी इन तमाम जानकारियों के बाद कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। आपको बता रहे हैं नौकरियों से संबंधित इन दिनों चल रही आवेदनों की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कुल पदों की संख्या 538 बताई जा रही है। अंतिम तिथि इसकी 3 जुलाई 2026 है और इसका आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में TGT लिफ्ट ऑपरेटर समेत अन्य पदों के लिए भर्ती आई है। पदों की कुल संख्या है 1979। अंतिम तिथि इसकी है 15 जुलाई 2026। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या है 4500। अंतिम तिथि है इसकी 22 जून 2026। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सब ऑर्डिनेटर कोर्ट्स ने हरियाणा के लिए जिला एवं सत्र न्यायालयों में क्लर्क के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल पदों की संख्या है 1265। अंतिम तिथि है इसकी 23 जून 2026। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। कुल पदों की संख्या है 12256। अंतिम तिथि इसकी 22 जून 2026। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल पदों की संख्या 899 है। अंतिम तिथि है इसकी 4 जुलाई 2026। आवेदन की प्रक्रिया डाक द्वारा है। तो ये थे नौकरियों से संबंधित चल रहे आवेदनों की कुछ जानकारियां। आप इन आवेदनों को करने से पहले संबंधित वेबसाइट से इनकी मिलान जरूर कर लें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि करियर गाइडेंस पर आधारित आज का हमारा यह कार्यक्रम नौचेतना आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित आपके महत्वपूर्ण सुझावों का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। तो कार्यक्रम में चलते चलते नोट कीजिए हमारा पता। पता है कार्यक्रम नौचेतना, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन संख्या 825301। इसी के साथ कार्यक्रम नवचेतना से दीजिए श्वेता को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे करियर सलाह पर आधारित कार्यक्रम नव चेतना। संकलन एवं वाचन था श्वेता रानी का। प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आप सभी के पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म रूठा न करो से यह गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी दोस्तों ने। माली टोला खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। इसी गीत को सुनना चाहा है खिरगांव माली टोला से कल्लू माली, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार, अनिकेत मालाकार और इनके घर के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम सिंघानी पोस्ट कोर्रा हजारीबाग से सुमन रानी, अनुराग राज, श्री प्रसाद और रूबी देवी। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में यह गीत फिल्म रूठा न करो से।

अभी आप सुन रहे थे फरमाशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण, हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: Spoon.
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
3: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
3: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती है। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए 2-3 चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो 2 चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
2: जी,
3: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
2: जी,
3: तो इस तरह की की जो योजना है, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
0: बहुत इंपॉर्टेंट ये सशक्तिकरण,
3: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
0: बिल्कुल,
3: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिंजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
0: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता
3: है। अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है, तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है, तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
0: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे वो इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
4: देखिए सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
0: जी।
4: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
0: जी।
4: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है, तो जो उनकी रुचि है जो वो कर सकते हैं उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर

एमबीबीएस के देख लें तो 55-56 हजार की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56 हजार एमबीबीएस आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32 हजार के आसपास थी, वो लगभग 65-70 हजार हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेज की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास की आजादी के बाद 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो

0: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारी युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो 2 साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो। तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप
0: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, इसमें और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी हैं, आईआईएम, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसा अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का

0: रंजन जी, जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
1: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
0: बहुत बड़ा समर्थन है।
1: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य हैं उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
0: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट
1: में, 2,000 के, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
0: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
1: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधी से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान लिए कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
0: बिल्कुल।
1: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब

0: सशक्त।
1: बिल्कुल संजना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
2: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है,
2: नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज।
3: वीर जी, मेड इन इंडिया, वीर जी इंदी तो चिप भी इंडिया बीच बन रही है।
4: कमाल है ना, कुछ साल पहले स्वदेशी जिहा कुछ भी नहीं सी, पर आज स्वदेशी का मतलब है टेक्नोलॉजी, शोर है, इनोवेशन, एम्पावरमेंट, पर हजे तक भारत की ताकत होर भी बधानी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के
2: मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा।
2: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया।
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
2: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो एमएसएमई आप देखिए ना, एमएसएमई सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
2: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है।
2: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
2: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी, जी।
2: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
5: 25 करोड़
2: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
2: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
2: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
6: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं भी गया था, पिछले दिनों जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा और वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500-500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट,
6: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां है जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनकी जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
6: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
6: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो हो गए छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: संजना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
2: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई, शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा
2: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
2: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
7: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
5: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. the headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 46 crore rupees. Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep three-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
9: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
8: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
10: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
8: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He also extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village, Paharpur. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Pashchim Bango Divas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi also participated in a grand function to celebrate the state day, along with Chief Minister Shubhendu Adhikari. He also launched dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the BJP government has started working at a superfast pace for Bengal's development.
10: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देंगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
8: The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is scheduled for tomorrow. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency NTA has conducted nationwide mock drills as part of preparations for the re-examination. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
4: Over 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed for the secure, transparent and smooth conduct of the examination. A multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification, GPS-enabled vehicles with police escort for the movement of the examination material, and end-to-end secure handling of confidential materials to designated locations under sealed protocols. The NTA is also actively monitoring social media platforms to curb misinformation and prevent malpractice. The examination will be held from 2 p.m. to 5 p.m. tomorrow. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
8: Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karvir, is a major center of faith for devotees from across the country. He said the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. He added that the project will enhance facilities for devotees and strengthen Kolhapur's position as a prominent religious tourism centre. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the government's transformative initiatives driving the vision of an empowered India.
5: Over the last 12 years, the government has driven a structural transformation in India's high-tech landscape. Two of the most significant pillars of empowered India are the development of a semiconductor ecosystem and the explosive growth of space startups. The India Semiconductor Mission was launched in December 2021 with a massive outlay of 76,000 crore rupees. By 2026, the government launched Semiconductor Mission 2.0 with a provision of 1,000 crore rupees. Speaking about the Semiconductor Mission 2.0, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav highlighted that while Mission 1.0 successfully established the foundational building blocks for this complex industry, Mission 2.0 will focus on deepening the ecosystem.
11: The first mission was to start the industry in our country, and it's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
5: The Indian Space Policy 2023 enables and permits the private entities to carry out end-to-end space activities, including undertaking launches, satellite realization and operations, data acquisitions and dissemination, and ground station. Talking to Akashwani News, Anil Prakash, Director General of the Space Industry Association of India, said that the country is currently home to more than 400 space tech startups.
12: In the last 12 years, India's space sector has undergone significant changes. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the reform of the space sector, the establishment of a space base and the increase in the private participation have started a new revolution. Today, more than 400 space tech startups operate in India, which are innovating in areas such as satellite, launch vehicle, earth observation and data service. India's first space tech unicorns, Skyroot Aerospace, is a proof of this change.
5: Through the breakthrough of the semiconductor mission and a thriving private space sector, India's journey toward a developed nation is being realized today as an empowered India. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
8: At least 5 devotees lost their lives and 40 to 50 others were injured after a portion of a temple structure collapsed in Manvat Taluka of Maharashtra's Parbhani district today. The incident occurred when a large number of devotees had gathered at the temple for darshan. Rescue teams rushed to the spot and launched relief operations immediately. Around 20 to 25 people were rescued from the debris, while nearly 15 injured devotees are undergoing treatment.

0: जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
1: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जिसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
0: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
1: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थानें हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमें रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अपन गए थे बेंगलोर में, चलिए हम आयुष मंत्रालय भी हमको, हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो, 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रही थी कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
0: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कैलकटा में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
1: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा

0: पूरे भारतवर्ष के सब बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहां के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा चार बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, भरत मंडपम में। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोणार शहर में हुआ था, जहां पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस बहुत अच्छी ढंग से वहां पर किया। सिर्फ वहां पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहां पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया। हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहां पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट एक कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहाँ के कारपोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहाँ तो रोड पर करेंगे, लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाए करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1,00,000 तक लोग शामिल होना चाहिए वहां पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10,00,000 तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने भी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो, ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, बस 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई। हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े बैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां है, कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि CSR फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए। तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1,000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका, कारपोरेशन, नगर पंचायत है, इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की, और लोग भी ये समझने लगेंगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,40,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहाँ पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहाँ पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति।

0: बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है। नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग तक। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आए होंगे वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर ईयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया, तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी, योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है, तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे में, तो वहां पर लोग फीस दे के एक घंटा योगा सीखने जाते या करने जाते, कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जादव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की रही, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight. Ye Akashvani hai.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर

आज की फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

0: पास हूँ सदा।
1: वासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनू रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात ये है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसे कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

आविष्कार और गृह प्रवेश ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश है आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही अंजलि का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जुआरी से यह गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौतन से, किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में यह गीत फिल्म चंदन का पालना से। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म का नाम है मेरी जुबान।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार।

दोस्तों, कार्यक्रम आज के फनकार में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार सानू की आवाज में कुछ गीत। कुमार सानू को 90 के दशक का मेलोडी किंग माना जाता है। उनका असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। उन्होंने अपने करियर में 13,500 से भी अधिक गाने गाए और लगातार 5 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दीवाना से, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायक कुमार शानू की आवाज में कुछ गीत। दोस्तों कुमार शानू के पिता पशुपति भट्टाचार्य स्वयं एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे, जिन्होंने उन्हें गायकी और तबला वादन सिखाया। कुमार शानू महान गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते हैं। उन्हें सबसे पहले संगीतकार जगजीत सिंह ने ब्रेक दिया था और फिल्म आशिकी ने उन्हें काफी शोहरत मिली उस फिल्म के गीत में।

दोस्तों, कुमार शानू के बारे में ये बता दें कि उनके नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। 5 बार लगातार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार, आशिकी, साजन, दीवाना, बाजीगर और 1942 अ लव स्टोरी में मिल चुका है। भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। और कुमार शानू ने हिंदी, बांग्ला और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी गीत गाए हैं।

अभी आपने सुना हेलो ब्रदर से यह गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रंग से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार, और आज हम आपको सुनवा रहे थे पार्श्व गायक कुमार सानू की आवाजों में गीत। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है।

0: पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।